अगर ना पर्दा करें तो कोई हर्ज नहीं है, यानी उस तरह का जो आप फॉर्मल एक बाजार में किसी से कर रहे हैं उसमें आप गाउन और स्कार्फ और वो सारी चीजें ना भी करें तो कोई नहीं, एक चादर ली हो, बाल नंगे ना हो, गला ना नंगा हो, जेवरात इस तरह के या सीना नंगा ना हो, बस सिर्फ ये कि हाथ या चेहरे की हद तक बगैर मेकअप के अगर आप उनके सामने आ गए हैं तो कोई क्यामत नहीं टूट पड़ी। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो बहुत सारे आपके सवाल जो है इसी के अंदर आ जाते हैं। लड़कियां बची रहें तो क्रिस्टल से ज्यादा कीमती, वेस्टर्न एक सेइंग मुझे याद आ रही है, किसी ने बच्ची ने लिखी है, बहुत मशहूर है वहां पर, कि बुरी लड़कियां वो होती हैं जिनसे लड़के महज दिल लगी करते हैं और अच्छी लड़कियां वो होती हैं जिनसे वो शादी करते हैं। इस तरह वो लड़कियां खुद को ज्यादा बावकार और महफूज तसव्वुर करती हैं जो लड़कों की गैर महज़ब हरकतों से खुद को दूर रखती हैं। शादी की तवक्को पर जो लड़कियां लड़कों को खेल खेलने का मौका देती हैं वो हमेशा परेशान होती हैं। इसके बरस जो लड़कियां अपना इज्जत वकार संभाले रखती हैं और वो उस मुतल्लिका लड़के से शादी न होने पर महफूज तो रहती हैं और उससे शादी होने की सूरत में उनके शौहर के दिल में उनके किरदार की पुख्तगी की वजह से इज्जत और एहतराम बढ़ जाता है जो जिंदगी को और खूबसूरत बना देता है और ये उनके सब्र का, सेल्फ कंट्रोल का सिला होता है। ये वाकई एक हकीकत है कि एक इंसान खुद को जब हदूद के अंदर रहता है तो कभी शर्मिंदा नहीं होता। जो हदूद तोड़ता है वो वक्ती तौर पर तो एंजॉय करता है लेकिन बिलाखिर शर्मिंदगी उसका मुकद्दर होती है और अगर वो बात दूसरों के सामने खुल जाए तो रुसवाई का सबब बनती है। तो एक छोटी सी खुशी और एंजॉयमेंट के लिए इंसान हराम का इर्तिकाब करके बसाओं का सारी जिंदगी के लिए नफसियाती मरीज बन जाता है। जो लोग हिजाब पे तनकीद करते हैं उनका कहना है कि कुरान की मुतल्लिका आयात की तफसीर कल्चर के हिसाब से की गई है, हर एक को ये देखना है कि उसके कल्चर के लिहाज से क्या चीज मारूफ है। इससे पता चलता है कि सर ढकना कल्चर है, खासतौर पर एशिया में। इस बुनियाद पर तो बहुत सी मुस्लिम खवातीन हिजाब को तर्क कर रही हैं। अब आप देखिए कि मैंने किस कल्चर के एतबार से तफसीर की है। किसी कल्चर का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने तो जो लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र किया है। और वो लफ्ज क्या है आयत निकाल लीजिए ताकि आप दोबारा देख लीजिए, इसमें अगर क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे सकिए। अब देखिए कि वकुल लिल मुमिनात यगदुदन मिन अबसारिहिन्न वयहफजन फुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलियद्रिबन बिखुमरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न। खुमर किसकी जमा है? खिमार की। खिमार किसको कहते हैं? सर के कपड़े को, दुपट्टे को, चाहे आप उसको दुपट्टा बोलें, स्कार्फ बोलें, कुछ बोलें, कोई भी चीज, लेकिन खिमार। अच्छा, एक और बात यह है कि कल्चर वल्चर कोई चीज नहीं है। किसी भी आयत का जब आप तशरी करते हैं तो सबसे पहले उसको अरबी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि वहां ये लफ्ज किस माने में इस्तेमाल होता है। हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर। जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रहती हैं, सीरियस के प्रॉब्लम है, जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही हैं, इनको हमने एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज है। लेकिन हंसने वाली बात यह है कि जो पिछली गैंग थी, जो सोशल डेमोक्रेट की थी, वेंस्टर की थी, मुड़गार की थी, इन्होंने एसएफ अगाड़ी खेल खुन सैवो के थियो के साथ मिलके इसको हटा दिया था। वो भी हम दोबारा ले आए हैं, जहां इन क्या कहते हैं यूथ जो है, इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और फिर बात ये भी चल रही है कि 2030 में, बल्कि जब उस वक्त जो जो हुकूमत आएगी, उन्होंने स्केल स्टोपल से दोबारा इन्फ्रा करना है, ताकि वो एक फ्री डे दोबारा आ जाए। इसके अलावा फिर जो हमारे कॉइन ऑम सीलिंग जो होती है, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी मतलब के हाईलाइट्स की, उसके ऊपर हमारी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इन चीजों में मैं कहूंगा कि हमारी काफी विन रही है, और हम रकेंग में नहीं गए। मैं तो चाहता था देखना ये कि हम रकेंग में भी होते, ताकि हमें भी एक एक मौका मिलता, एक ऐसे ओहदे पे बैठ के जहाँ हमारी बात भी रोजाना सुनी जाती मीडिया में। क्योंकि अगर मिनिस्टर होते हैं तो जाहिर आपकी पार्टी की बात ज्यादा सुनी जाती है। लेकिन हमारी पार्टी ने कहा था कि हम कुछ ऊंचे का हैं, और उसकी वजह यह है कि रकेंग कोई चीजें ऐसी चाहती हैं जिसमें हम साथ नहीं दे सकते, इसलिए हम 25 दफा बनेंगे, फिर इंशाल्लाह अगली बार देखा जाएगा। जी राय साहब,
1: कासिम आप कोशिश तो करते रहते हैं। आप देखें, स्वीडन आपके पड़ोस में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, जो यहाँ की डेनिश पीपल्स पार्टी है, आपकी उनसे हमेशा मोहब्बत रहती है। पिया कैस्को चलेगी, उनकी जगह दूसरा चेयरमैन आ गए हैं, तो मोहब्बत का सिलसिला तो चलता रहेगा। इसी तरह स्वीडन में इलेक्शन में ये मुसलमानों की खासकर बात की जा रही है, अब गैर मुल्कियों की बात की नहीं जा रही। तो यहाँ भी ये सिलसिला होना चाहिए कि गैर मुल्कियों से फैसला तो ले लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेकर ये वोट भी ले लेते हैं, गैर मुल्कियों की भी वोट ले लेते हैं। जब हमारी बारी देने की आती है, आपने डेडिकेटेड वेंस्टा की बात की, ये हमेशा इक्तदार में रहे ज़्यादातर जो है ना, लेकिन कभी इन्होंने कोई ऐसा गैर मुल्कियों के लिए कोई मेजर काम तो किया नहीं है।
0: देखें जनाब, मैं जो डिबेट करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं बॉल अपनी क्या कहते हैं गेम लाइन तक रखूँ। अब आपने गड़ीखेल वेस्टा की बात की है, तो कुछ हद तक मैं आपका साथ दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप किसी गड़ीखेल वेस्टा के बंदे को बुला के इस चीज के ऊपर बात कीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: तो मैं आपसे जो है समेरा नवा की बात करना चाहता हूँ कि पहली खातून हमने देखी है किसी गैर मुल्की ने अभी तक उसकी कोई मुखालफत नहीं की।
0: मैंने तो फेसबुक में मुखालफत भी देखी और ये भी देखा है कि उसके हक में भी लोग बोल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे भी है, हमें खुश होना चाहिए इस बात पे कि फाइनली एक गैर मुल्की को हम एक मिनिस्टर की पोस्ट में भी देखने लग पड़े हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो यूथ हैं, वो ज्यादा अब पढ़ाई की तरफ फोकस डालते हैं, अच्छी अच्छी जॉबों में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्लब्स में प्रोफेशनल लेवल पे लगे हुए हैं, हम हर तरफ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और मेरे लिए ये कहना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए कि जहां जहां हम रिप्रेजेंट हो सकते हैं सोसाइटी में, उतना ही बेहतर है, क्योंकि उतने ही हम अपने ऐसे देखना है कि ये हम एक ईंटे लगा रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि उनको पता चले कि ये मौका उनको भी मिल सकता है। हम एक दरवाजा खोल रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है और जो पहले बंद रहा है, हमेशा बंद रहा है। अगर आप फुटबॉल टीम को लेने, टेंस फुटबॉल जो है, अगर आप इसको लेने तकरीबन 17 साल पहले कह लेते हैं, उस वक्त कोई गैर मुल्की डेनिस टेंस लेंस हॉल पे नहीं था। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली गैर मुल्की की बात कर रहा, नहीं था, वो लेते ही नहीं थे, उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि आस्ता आस्ता आना शुरू हो गए हैं, रिप्रेजेंट शुरू हो गए हैं, जिस तरह उधर आना शुरू हुए हैं लेंस हॉल पे नेशनल टीम पे, इसी तरह हमने देखा कि क्लबों में भी वो आना शुरू हो गए हैं। सुपर लीग है, जो प्रोफेशनल फुटबॉल जो टूर्नामेंट होती है, उधर भी आना शुरू हो गए। मतलब एक दरवाजा जब खुल जाता है तो बाकी जो आने वाली जनरेशन होती है उनके लिए आसानी हो जाती है। अब जो समीरा नवाज आई है, मेरे ख्याल से उसको क्रिटिसाइज करने से पहले हमें उसका काम देखना चाहिए। हमने उसको पहले भी देखा है कि वो क्या बोलती है, क्या काम करती है। कोई लोग उसके खुश हैं जिस टॉपिक पे वो करती है, कोई लोग कहते हैं कि इसने इतना नहीं किया हमारे मतलब के गैर मुल्क हक में इतना नहीं किया। लेकिन ये भी मानना पड़ना है कि उसने गैर मुल्की होने के नाते बहुत सारी मार भी खाई है। जब वो इलेक्टेड हुई थी एज अ पार्लियामेंट मेंबर, तो कोई पार्टियां ने कहना शुरू कर दिया था कि ये तो डैनिश है ही नहीं, अपने आप को डैनिश कहती फिर रही है, ठीक है। तो मतलब कि उसके ऊपर क्रिटिसाइज इस तरीके से दूसरी तरफ से भी हुआ था, लेकिन उसकी सपोर्ट में भी बहुत सारे आए थे। तो मैं ये कहता हूँ हमेशा कि पहले इंसान को अपना एक काम करने दें, फिर आप उसके काम से, उसके रिजल्ट से आप उसको जज करें। पहले जो हुआ ठीक है, कोई उसके हक में, कोई उसके हक में नहीं हूँ, मैं कैसे हूँ वो मैं अपने तक रखूंगा।
1: बड़ी अच्छी बात की है कासिम, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप मसरूफ़ हैं, आप हमें टाइम देते हैं और आप मेहनती हैं, वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं, अपनी पार्टी के भी हार्ड वर्कर हैं, और आपकी जिम्मेदारियाँ हैं ये कैटेगरी सी की तरफ भी जो है, फाइव की तरफ भी जो है ना, ये अपनी पार्टी के कानों में ये बात डालें कि अच्छे लोगों जो है ना, अच्छे लोगों की वजह, अच्छे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, किसी चंद लोगों की वजह से जो है ना इस कानून को आपने क्यों बनाया हुआ है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात, और यही जो कोशिश होती है ना, तो जो जैसे मैंने हमेशा कहा है कि देखें, अगर आप एक पॉलिटिकल ओहदे पे नहीं बैठे, या या तो आप कोशिश करें कम से कम अपनी पार्टी के अंदर एक इन्फ्लुएंस लाएं जहां वो आपकी बात भी सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मैंने पिछले 10 साल का बल्कि पार्टी बनाई थी इनके साथ मिलके, और काफी मतलब के ऊंचे लेवल पे भी इनके साथ बैठा हूँ, बैठा रहा हूँ और बैठा भी हूँ अभी भी। तो उधर बातचीत होती है, क्योंकि अब देखें जाहिर है हम भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि इसलिए ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो स्टूडे पची होने का फायदा ये है कि अब जैसे फलस्तीन के बारे में है कि हम अभी भी उसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं जिस तरह हम हमेशा उठाते आए हैं, क्योंकि सबको पता है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो वो है अल-चायना। और वो मैंने बात उनसे की है, मैंने कहा कि रगे खुले में इसके बारे में इतना कुछ नहीं लिखा गया, वो क्यों? तो उन्होंने कहा था कासिम हमारे पास मेजोरिटी नहीं थे, क्योंकि अगर अब हम देखें कि अब अगर ये जो केक बनी है स्टूडे पची से, अगर अल-चायना अपने मंडेट ना डालते तो फिर भी ये गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने डालने हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें मिल गई हैं, और अब हम साथ में जिस चीज पे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस हक के लिए हम फाइट करना चाहते हैं हम अभी भी कर सकते हैं। तो वही उम्मीद में रखता हूँ कि हमें पार्टी के साथ मिलकर उधर पुश कर सकें जिस तरफ हम चाहते हैं कि पार्टी जाए इंशाल्लाह।
1: कासिम आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
0: जनाब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और सामईन को मेरी आवाज़ सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया जनाब।
1: सामईन नाज़रीन ये थे कासिम नज़ीर जो के बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुलकर कह दी, वाजे करके कह दी कि किस तरह पीछे बैक पे बैठकर काम किया जाता है। अगर बंदे की नीयत अच्छी हो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सामईन नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई बात करना चाहें तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। सामने नाजरीन ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर बरा रास्त हाजिर है। तमाम ने अपने सुबह इंट्रो में कहा था कि बहुत सारे मेहमान होंगे, आपको पता है कि इलेक्शन कम्यून्स के होंगे, पार्लियामेंट के होंगे, काफी टाइम लगा जो है वो हुकूमत बन गई, वजारतें भी तकसीम होगी और आगे काम करना है, तो यही की असल जो मसला है कि आगे काम करना है तो उस काम का कैसे किया जाएगा, जिसमें गैर मुल्कियों का क्या रोल होगा, और अब गैर मुल्की जो हैं वो दो वजीर भी बन चुकी हैं, तो देखते आने वाले दिनों में ये क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो हमने कहा क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रखी जाएं, कोई खबरें रखी जाएं, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। तो हमारे साथ इस वक्त ज़ीशान अली मौजूद हैं जिन्हें आप अक्सर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पेशे के लिहाज से ये उस्ताद हैं, तो अब सियासी उस्ताद भी डेफिनेट, इनको उस्ताद के नाम से याद किया जाता है। तो ज़ीशान आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको, सब सुनने वालों को, और पहले से ही आपको थोड़ी सी माजत कर दें, ये महफिल में छोटे के साथ फुटबॉल पे आया हूँ, बाहर एलर्जी ने काफी तंग किया, तो वो जैसा नहीं कहते लगी रहेगी।
1: सियासतदान वो है जिसके पास टाइम होना चाहिए, हर तरह का टाइम होना चाहिए, एलर्जी में भी जो है वो टाइम निकालना पड़ता है।
3: हाँ जी वो तो फिर सही है, आप फोन करेंगे तो फिर जरूर।
1: जिस सियासतदान के पास टाइम नहीं है उसे चाहिए कि वो सियासत ना करे,
3: वो तो फिर ऐसा मतलब इसके लिए टाइम निकालना
1: आप
3: पड़ता है।
1: आप जैसे लोग और भी लोग हैं, अच्छे जॉब हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, स्टेटस ठीक ठाक है, तो आप आराम से बैठे रहें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, आपको जरूरत क्या सियासत करने की?
3: बस असल में सियासत वही है, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरे से भी लोग बात करते हैं कि मतलब क्यों करते हो, कौन सा जाती मुफाद है तुम्हारा, मैं यार जाती मुफाद के लिए अगर सियासत करनी होती फिर सारे हम लोग गाड़ी बैठते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम काम है, घर है, गाड़ियां है, मतलब तनख्वाह आ जाती है, इतनी आती है कि और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। तो पहले अगर आप देख ले, मैं मतलब टीचिंग के साथ 5-6 साल बिजनेस अपना साथ में करता रहा हूँ, मगर अब वही टाइम सियासत को देना पड़ रहा है। तो ये सियासत अगर आपने करनी है तो वो एक शौक वाकई नहीं, और एक फिक्र लाजमी आपके में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें उस तरह से कोई और मुफाद नहीं आएगा आपका कि जी इकोनॉमिक के लिए कर रहे हो या किसी के लिए कर रहे हो। नीयत वही इसीलिए कहते हैं नीयत साफ रखे अपनी और इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। खैर अगर अंदर आ जाए आप मिनिस्टर बन जाए वाकई अच्छी लर्निंग है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए तो एक दूसरी गेम है ना। हम लोग जो कर रहे हैं
1: वहां पहुंचने के लिए सियासी स्विमिंग सीखनी पड़ती है
3: बहुत ज्यादा जी बहुत ज्यादा। अब आप देखें माशाल्लाह से वो नावा बन गई है मिनिस्टर, जो पहली जितना माइनॉरिटी वुमेन और मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ उसको भी अगर आप देखें, मैं मेरे ख्याल से पहली दफा उसको मिला हूँ 2010 में और तब अभी वो वॉस किले में अपना सारा जिस तरह कहते हैं ना शुरू कर रही थी, उसका एक एम था और आज देखें 2026 हो गए, मतलब 20 साल से वो लगी हुई है इसमें अपनी मेहनत करने में काम करने में। और हमारे कुछ लोगों को लगता है कि बस रातों रात आ गए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज्यादातर एक्टिव होते हैं कम्युनल वेल में। कम्युनल वेल में तो आपको पता है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, कम्युनल वेल में काफी जगह अंदर आना काफी आसान है अगर आपने पार्टी सही सिलेक्ट की हो तो। उधर तो आपको बेशक डेनिश बोलने ना आए, आपके पास कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप अंदर जाके बैठ जाते हैं। और हमारे लोगों को लगता है कि जी फलके सिंह की भी जो सी पॉलिटिक्स है वो भी ऐसे ही चलती है, तो वो ऐसा नहीं है। फलके सिंह है, नेशनल असेंबली है, मांगती है, वो बहुत सेक्रीफाइस मांगती है, उसके लिए आपको अपना भी काफी टाइम देना पड़ता है और काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप माशाल्लाह देख ले हमारे मलक सिकंदर साहब, वो उनका भी आप लास्ट इंटरव्यू में सुन रहा था, मतलब बाहर बैठ के भी बेशक वो पार्लियामेंट में नहीं बैठे हुए कितना एक्टिव है, नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के लिए
1: काम करना जो होता है उस पर मेहनत करनी पड़ती है। आपने एक देखा बड़ी चीज हमें मिली है, हैरानगी की बात है और ये बात ठीक भी है कि इस दफा समेरा नवा जो बनी है मिनिस्टर बनी है तो सब ने मुझको अप्रिशिएट किया, किसी ने मुखालफत में बात नहीं की।
3: नहीं जी, क्योंकि वो अपना आप बना के मतलब काफी साल लगा के आई है, एक अपना आप बना के आई है। और अगर आप देखें लोग बोलेंगे जिसने वो अच्छा जी इंटीग्रेशन मिनिस्ट्री वगैरह ये क्यों नहीं ली, तो ये एक चीज अच्छा है, पॉजिटिव है। ये है कि क्लीमा मिनिस्ट्री ये असल में पहले मुरगारन के पास रही थी, लास्ट ओगो बड़ा अच्छा मिनिस्टर रहा इस पे, जो उसने बड़ी मिनिस्ट्री एक ले ली अपनी। और गाड़ीखेल की जो मंशूर है उनका, उसमें भी क्लीमा काफी स्पिलाइन करता है, तो अच्छा है वो अपनी एक दूसरी तरह से अपनी पहचान बनाएंगी और फिर इंशाल्लाह इसका फायदा कल को इंशाल्लाह मुसलमानों को भी होगा।
1: चले जी, ऐसे लोगों ने जो है ना आगे बढ़ने के लिए अपना टारगेट रखा होता है, मेहनत का टारगेट रखा होता है, कल वो वजीर आजम ही बन सकती हैं। तो आते हैं आपकी पार्टी की तरफ, तो आपकी पार्टी के कितने वजीर बने?
3: हमारे चार बने जी। अरे पहली पिछली बार मेरे ख्याल से छह थे, इस बार चार बन गए। तो लास्ट लेके जैसे कि आपको पता है वो ऐसे से सबको पता था कि वो तो फॉरेन मिनिस्टर ही रहेगा, जो सी भी गवर्नमेंट आती फॉरेन मिनिस्टर उसी को चुनना था, क्योंकि उसके अलावा कोई उस पोस्ट पे बैठा और जो दुनिया के हालात है नजर नहीं आ रहा था, तो वो रहा है। तो उसके बाद हमारा जो याकप एंगल स्मिथ है जो कल्चर मिनिस्टर था, उसको अब टैक्स का मिनिस्टर बना दिया। देखे स्कैड मिनिस्टर हमेशा बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, वो कहते ऐसी मिनिस्ट्री है जिसमें पता नहीं, जो भी मिनिस्टर बनता है उसका काम काफी काफी होता है। तो बाकी एक जो मिनिस्टर है वो रह गई है जो पहले भी थी, क्रिस्टीना हिल और फॉस्टनिंग से की, और साथ की चली सेंग भी उसको दे दिया, तो एक मिनिस्ट्री ने खत्म किया ना डीडी की चली सेंग मिनिस्ट्री, तो उसको दो मिनिस्ट्रियां उसको मिला के उसको दे दिया। और फिर जो सबसे अच्छा सरप्राइज हमारे लिए था वो, और स्पेशली हम जो ओमा इनके कैंडिडेट्स थे, हमारी जो स्पेस कैंडिडेट थी इधर की मोनिका हुपिंग, उसको सोशल मिनिस्टर और नोर इसामा पायद का बना दिया गया ना, तो वो काफी अच्छा हो गया।
1: क्योंकि आप साथ काम करते रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो किस तरह की हैं, किस सोच की मालिक हैं।
3: वैसे वो काफी अच्छी अच्छी रही है काम करने में मेरे साथ भी, जब क्या कहते हैं इलेक्शन के दौरान भी फोन वगैरह भी करना, जब मैं डिबेट पे भी गया था इधर हेलो किमनेशन में, उसके बाद में मुझे फोन भी आया कि निशान मुझे वो मॉन्टोस का और उसका जो सा क्या कहते हैं फांसे वाली वगैरह बता रहे थे कि यार आपका जो मुरगारने का बंदा है उसने काफी अच्छी डिबेट की है, तो ये काफी बैकअप करती रही है ना मेरा भी ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो काफी अच्छी पेशे से डॉक्टर, मतलब अच्छी जिसको कहते हैं काउलिस भी अच्छी है, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस उसके साथ रहा है काफी अच्छा रहा है। और उसका जो कहते हैं कंपेनियन उसका हस्बैंड था वो भी बहुत बड़ा नाइस बंदा,
1: ذیشان سارے سینیریو میں جو ہیں وہ غیر ملکی کہاں ان کی ساری پارٹیوں کی جو کمیٹیاں بنیں گی جو کچھ ابھی تک سامنے نظر آیا اس میں تو غیر ملکیوں کا کچھ نظر نہیں آ رہا
3: نہیں وہ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں کہ میں نے بھی یہی سوال کیا تھا وہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے ملک صاحب سکندر صاحب نے بھی آپ کے پچھلے انٹرویو میں وہی بولا ہے کہ غیر ملکیوں کے بارے میں مطلب نہ ہونے کے برابر ہی ہے نا یہ ہے کہ ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں سختیوں کی طرف نہیں جا رہے مگر یہ بھی ہے کہ ایزی بھی نہیں کرنے لگے ہمارے لیے مطلب جو ہے وہی رکھیں گے سرپرائزنگلی اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو گیا کہ یہ جو مشتاق لون فائق اور جس طرح کے ان کے لوگ تھے سوشل ڈیموکریٹ کے ان کو انہوں نے تھوڑا سائڈ پہ کیا ہے مونتوز کو جیسے بندے کو لے آئے ہیں اور مونتوز کو کے ساتھ ہم ہماری کمیونٹی کی تو کافی لگتی ہے مجھے پتا ہے کافی دفعہ اسے دیکھا بھی ہوا ہے لو میں ایکٹیو رہتا ہے میری اس سے پرانی گپ شپ غورو کے ٹائم سے بھی ہے مطلب ہماری غورو والی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے دیکھیے ان سے کشوز نشتا اس بار کافی ہمارے وہ جسے نہیں کہتے مطلب کا آیا ہے اور ہمارے جتنے دوست یار جو سوشل ڈیموکریٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مجھے پتا ہے اس کی اچھی بات چیت ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے بات جتنی بھی ہیں آگے لے کے
1: چلیں یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن یہ جو بات چل رہی تھی پارکنگ کی بھی بات ہوتی ہے انس لسٹن والی آپ کی حکومت میں شامل تو ہیں لیکن ان کو وزارتیں نہیں ہیں افیشلی تو چار جماعتیں شامل ہیں یہ جو دانتوں کے ڈاکٹرز کا بتایا کہ دانتوں کا علاج مفت ہوگا تو لوگوں نے یہی سوچنا شروع کر دیا کہ دانتوں کا علاج مفت ہو چکا ہے اور اسی طرح 22 سال تک کا جو سفر ہے سفری جو سہولیات ہیں بسوں کی ٹرینوں کی یہ ہو چکی ہیں لیکن میرے خیال ہے ابھی یہ پیپروں میں ہی کام ہے خالی باتوں تک کیا تک ہے
3: جی راجہ صاحب اصل میں یہ ایک سمجھنے والی بات ہے پولیٹکس میں اسپیشلی ایک ویلفیئر سوسائٹی میں ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی فری پبلک ٹرانسپورٹیشن دانتوں کے ڈاکٹر وہ تو آپ بھی چاہیں گے میں بھی چاہوں گا فری اسکولنگ ویسے ہے مطلب لے ہیلپ جو سولہ ہیلپ ہے وہ ساری فری ہے مگر فری تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا جی ان دی اینڈ فری ہم سب چاہتے ہیں مگر کہیں نہ کہیں سے تو پھر پیسے آنے ہی ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک چیز ہمیشہ رہی ہے کہ ان دی اینڈ پیسے تو ہم نہیں دینے ادھر سے دیں کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں
1: تو پیسے تو دیں گے آپ دیکھیں نا یہ جو پینشنسٹ ہیں یا سینئر سٹیزنز ہیں یا ہینڈی کیپ پینشنسٹ ہیں لیکن ان کی جو سہولیات ملتی ہیں پھر گھوم گھام کے تو پھر پیپر تو ڈاکٹرز بھی وہیں بھیجتے ہیں کمیون کے پاس کمیون سپورٹ کرتی ہے تو اگر یہ میں کہتا ہوں یہ اینکوں والے اور یہ دانتوں والے میری نظر میں ایک مافیا کی شکل میں ہیں کہ ان کا بزنس ہے اچھا خاصا بزنس ہے آپ کو اسپتال میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ فری ہیں تعلیم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سب سے ضروری چیز آپ کی فری ہے دانتوں کا علاج اسکول میں بچوں کے لیے فری ہے تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے یا کہ پیچھے ایسا مافیا ہے جس کے سارے مفادات ان چیزوں میں جس طرح شوگر کی دوائی جو ہے وہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں بلاسٹک میزائل بنا چکے ہیں شوگر کی دوائی ایسی نہیں بنا سکے جو ایک ہی بار کھائیں تو ختم ہو جائے
3: بس اصل میں وہ فری کرتے کرتے کے چکروں میں وہی ہو جاتا نا وہ بیوروکریسی بڑی آ جاتی ہے میری لڑائی ہمیشہ تھوڑی سی یہ جو ریڈ پارٹی جسے ہم بولتے ہیں اکانومیکل لیول پہ غور پچھیا ان کے ساتھ میرا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اتنی بیوروکریسی آ گیا ہر جگہ اسکول میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں مطلب اتنا بیوروکریٹیکل ورک ہو گیا کہ مطلب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں پڑھانے سے زیادہ یہ جو باقی کام میرے سے کروا رہے ہوتے ہیں نا یہ جان تنگ کی ہوئی ہے اور ادھر مجھے تھوڑا سا جو فلو اکنومی ہے اچھی زیادہ اس لیے لگتی ہے کہ یہ تھوڑا فری کرنا چاہتے ہیں بیوروکریسی کم ہو پیپر ورک کم ہو اور آگے جا کے مطلب فائدہ ہو ہم لوگوں کو یہ چیز بڑی ضروری ہے اور یہ کر نہیں پا رہے کیونکہ ایسا سسٹم بن چکا ہے کہ پتہ نہیں اتنا پیپر ورک ہے ہر چیز کا کہ بندہ پاگل ہو جاتا سو یہ ایک بڑی وجہ رہی ہے ہمیشہ میں بھی جو مجھے کبھی پوچھتے ہیں وہ فائدہ کی میری بہت اچھی ہے میں کہ بہت اچھی ہے میری ہمیشہ یہ لڑائی رہتی ہے یار پیپر ورک بڑا اکٹھا کر دیا تم لوگوں نے ہر چیز فری کرنے کے چکروں میں ہر چیز کو ڈاکیومنٹیشن کرو اور آپ وہی دیکھ لیں ہمارے سولہس بیس کا کیا حال ہو گیا آپ اور ہم لوگ کتنے اتنے سال ہو گئے ہمیں کہ پہلے کتنا اچھا ہوتا تھا اب آپ فون کرتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کرتے ہیں جی تین تین چار چار چھ چھ مہینے بعد ٹائم ملتا ہے اگر آپ کی کوئی فسیک نہیں ہو اگلے ہفتے ٹائم دے دیتے ہیں آپ
1: اور یہ بھی ایک سوال یا نشان اگر آپ کی فسیک نہیں ہے تو آپ کو جلدی ٹائم ملتا ہے
3: बिल्कुल, और वही डॉक्टर है, वही फोन है। अगर आप उसे बोलो ना मैं फसेकरिंग, मेरी फसेकरिंग कवर कर रही है, तो अभी हफ्ते का टाइम मिल जाता ये है।
1: और छह महीने या तीन महीने के बाद जो टाइम मिलता है वो 10-15 मिनट में बात जाते हैं, खुदा हाफिज़ आ जाओ अपने डॉक्टर के पास चले जाओ,
3: बस ऐसे ही है। वो गलती से टाइम खत्म हो जाए, अगर वो बोले कि ठीक है तो फिर नए सिरे से। और तो ये एक काफी चीज मैं देख रहा हूँ कि
1: तो ये किसके अंदर आती है, इसको किसने ठीक करना होता है?
3: इसको तो ये पॉलिटिकल सिस्टम ने सही करना है जी। ये जो ब्यूरोक्रेसी सारी बनाई हुई है, इसको कैसे खत्म करना, ये एक चीज है। आप तो मैं बताऊं, मेरा एक जो एक पर्सनल शौक भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आने के लिए रहा, वो ये भी देखने के लिए आया कि यार ये इतना ज्यादा इनविक्लर क्यों है, हर चीज को इतना इनविक्लर इन्होंने क्यों कर दिया है कि जो अच्छा बंदा है, नॉर्मल बंदा है, जो कोई सलाहियत रखने वाला बंदा है, वो पॉलिटिक्स में इतना, जो एजुकेटेड बंदा कम कम लोग आना चाहते हैं। आजकल ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हैं, मिनिस्टर्स जो आप बैठे हैं, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि काफी सारे मिनिस्टर हमारे ऐसे बने हुए हैं, इनके पास अवैध सफाई कोई नहीं है, ये पढ़ के आए हैं बस, वो यंग एज से पॉलिटिकल पार्टीज में रहे हैं, स्टेट्स कॉन्सकेप या ऐसे कुछ पढ़ के आ गए हैं, काम कभी इन्होंने 5-10 साल किया नहीं पाया। तो ये भी बड़ा मसला है कि जो हमारे बैठे हुए हैं लोग अंदर, ये ऐसे हैं जो बस पैदाइशी पॉलिटिक्स ही पढ़ रहे हैं, बाहर दुनिया नहीं देखी, जिन्होंने काम खुद नहीं किया वो बैठे हुए हैं। तो ये भी आपको पता, ये भी मसला हो जाता है, और ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो ये एक मेरी बड़ी इंटरेस्ट रही है पॉलिटिक्स में घुसने के लिए कि मसला क्या है वैसे इधर की पॉलिटिक्स पे। वो मैंने कहा तनकीद बाहर
1: आपके पास टाइम है, क्योंकि आप हुज़्बे सुलसा में भी बैठे हुए हैं, तो आपकी मुलाकातें भी आपके चेयरमैन से, लीडर से होती रहती हैं किसी न किसी मौके में, या आप लोग इकट्ठे होते हैं। ये जो कैटागरी सी वाला मामला है, देखें जो अच्छे शहरी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो देखें ना, मुझे छोटा बेटा कह रहा था कि अभी से लाइसेंस कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सुइसिकनी कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, यूरोप में एक ऐप्स आ गया उस पर आप करें तो मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई। अगर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो कैटागरी सी में ऐसी बना लें जो अच्छे लोग हैं उनके तो ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए।
3: जी बिल्कुल, और वो मैं लास्ट वीक जब आपसे बात हुई थी, मैं यही सोचता रहा हूँ कि अब हमें करना क्या चाहिए और क्या करें, क्योंकि माशाल्लाह हमारे इतने बंदे एक्टिव हैं, इतना टाइम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करने में भी, तो थोड़ा सा टाइम इधर किसी तरह निकाल के ना अब हम लोगों को वो क्या कहते हैं ना ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। मैं ये इतना मुझे होप से मेरा है, पॉलिटिक्स में भी आगे पीछे देख के पता चल गया है कि लॉबीज्म डेनमार्क में काफी चलता है, और लॉबी कोई भी हो, और ये है कि इधर भी फंडिंग होती है, इधर भी फंडिंग होती है, क्रोने लगाए जाते हैं पार्टीज पे, हमें भी आना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, मतलब एज अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जाओ, चले मुसलमानों को इकट्ठा करना और मुश्किल हो रहा है, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी में माशाल्लाह अब नया इलेक्शन लड़ा हूं तो देखा काफी अपने बुजुर्ग काफी बड़े हैं, हमारे कितने पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, जो इधर पले बड़े हैं, मगर जो इधर ग्रीन कार्ड पे भी आए थे कुछ साल पहले, वो भी बड़े पढ़े लिखे बड़ी अच्छी पोस्टों पे। अब हम लोग सारे इकट्ठे हों किसी तरह, कोई इनको इकट्ठा करे, अम्बेसी की मदद ले, साहब मैं सुन रहा था कि अम्बेसी से भी काफी लोग खुश हैं, और लॉबीज़म की जाए, कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट अब कितने हैं, हम सब किसी न किसी पार्टी में कॉन्टैक्ट हैं, कॉन्टैक्ट लेके चलते हैं, फंडिंग करनी पड़ी तो पार्टीज की फंडिंग भी करो जी, क्योंकि फंड्स की हर पार्टी को जरूरत है, फंड दो और अपनी मनवा लो, ऐसा ही ऐसा ऐसा चलता है, इधर भी चलता है लॉबीज़म।
1: देखिए निशान, मेरी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, स्वीडन में आपको पता है इलेक्शन हो रहे हैं गालबन 13 सितंबर को हो रहे हैं, उसमें तो कमून के पार्लियामेंट के होते हैं, तो उसमें भी जो जिस तरह की डेनिश पीपल्स पार्टी डेनमार्क में इसी तरह की स्वीडन में है, तो उन्होंने अब बयान देना शुरू कर दिया है, ये जो आज़ादी होती है बोलने की कहने की, कि अब जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, गैर मुल्कियों के लिए नहीं बोलते, टोटल टारगेट जो किया जा रहा है मुसलमानों को। तो अब एक सवाल ये समझ नहीं आता कि हमें इबादत गाहों की भी हमें इजाज़त है, इतनी इतनी अच्छी मस्जिदें बन गई, कल्चर सेंटर बन गए, सारी चीज़ें बन गई, इन्होंने हमें इजाज़त दी है तो ये बनी है ना, लेकिन उसके बाद मसला ये है कि ये फिर क्यों बात करते हैं। तो बात अब समझ आती है कि जितनी चीज़ें ये इबादत गाह या चीज़ें बन चुकी हैं, ये सारी मुसलमानों की जो जितनी भी चीज़ें बड़ी बनी हैं, इनको कंट्रोल कोई और करते हैं बाहर से बैठे हुए लोग।
3: हाँ वो बाहर से भी है राजा साहब, असल में फिर वही आ जाता है कि सहूलियत,
1: ये गैर मुल्कियों को टारगेट नहीं कर रहे जो स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं डेनिश पीपल्स पार्टी, वो अब मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ।
3: असल मुसलमान तो जी अल्लाह माफी दे, हम तो पूरी दुनिया में टारगेट अटैक, क्यों? क्योंकि हमारा कोई वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, कोर ही नहीं है, कहीं कहीं इकट्ठे हो गए खड़े ही नहीं होते हम लोग। उन्हें पता है कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री में इस वक्त वो ग्रुप है जाहिर है जो सबसे कम ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अभी भी आप देख लें, मेरी वही लड़ाई है कि अब जब गवर्नमेंट बनी है, ब्लू ब्लॉक ने यही कहना शुरू कर दिया जी कि जी उलनिंग फुले छीक मुस्लिम, फिर वही उठा लिया। और मैंने कहा भूत नहीं दे, खबर निकल रही है कि हमारे स्कूलों में बच्चे डेनिश मैथ नहीं पास कर पा रहे। इस वक्त ये फिक्र होनी चाहिए हम लोगों को, तुम लोगों ने फजूल का हुआ बनाया हुआ, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम बना देते हैं।
1: आप बताएं, एग्जांपल दें कि मैं मुसलमान, आप मुसलमान नहीं है।
3: या नहीं, हम तो देते हैं ना जी, और जो होते हैं वो तो कहते नहीं अच्छे हैं, मुंह पे तो आपके हमेशा बोलते हैं, मगर बस ऐसी अगर कोई हर मुल्क में चली हुई है आजकल हमारे खिलाफ के, और हम कहीं से इकट्ठा नहीं हो पा रहे, कोई एक आवाज कहीं भी नहीं बनती हमारी, अनफॉर्चुनेटली। जो आपसे भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम बात हो रही थी कि अगर आप हम सबको देखें जो पर्सनली लेवल पे मुसलमान मैं हूँ, अब मैं मुझे 40 साल हो गए पर्सनल, मुझे कभी कोई फील नहीं हुआ, काम मैं कर रहा हूँ, काम पे भी अच्छी रिस्पेक्ट है, काफी लोग जो मेरे दोस्त यार हैं आपको भी, हमारे जितने लोग कामों पे हैं कामों पे हमारी ठीक रिस्पेक्ट है, मगर ये जो मीडिया, ये जो एक छोहिक है, ये जो एक नैरेटिव है, वो एक दूसरी चीज है, और उसमें जाहिर है सबसे कमजोर हम हैं, तो सारे ही हमें लताड़े होते हैं।
1: बहरहाल देखें ना, अल्लाह ताला ने टाइम दिया होता है लोगों को, अल्लाह यहाँ से इस मुल्क से जो सीखा होता है। देखें आप इस वक्त ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एलर्जिक भी आपको है, लेकिन उसके बावजूद टाइम दे रहे हैं, ना टाइम दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको से टाइम आपका इंटरव्यू ना लूँ तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मुल्क से जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ इसने हमें दिया है, और जितनी हमारे पास सहूलियात होती हैं बात करने के लिए, टाइम के लिए होती हैं, उस पर अपनी ज़ाती कुर्बानी भी देनी पड़ती है।
3: बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखें मेरी बच्चे जिन्हें मैं पढ़ाता होता हूँ वो भी कहते हैं यस, क्या कहते हैं जी मैंने इधर नहीं रहना, इधर से चले जाना। मैं ठीक है चले जाना, जाओगे किधर? ठीक है जाओगे किधर? जाने के लिए बड़े मुल्क हैं जिनकी एजुकेशन है, जा भी सकते हैं बिल्कुल है, मगर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क ने देखे इतनी हमें और हमारे वालदैन को भी और हमें भी इतनी कम अज कम अपॉर्चुनिटीज दी है कि हम कहीं ना कहीं पहुंच गए। किसी अरब मुल्क में रह रहे होते काफी ऐसे मुल्क हैं जहाँ ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। आज ये है कि आज हमारे कितने लोग हैं जो एजुकेटेड हो गए, अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किस वजह से बैठे हैं? डेनमार्क की वजह से बैठे हैं, नहीं देखे सिस्टम की वजह से बैठे हैं। आज घर बैठ के गालियां देना बड़ा आसान है, मगर बीच में उतर के साथ इकट्ठे होके किस तरह ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अभी मैं वही आपको कह रहा था, सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए एक दफा, कितने कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे नहीं बैठे हुए, फंड बना लेते हैं जी। हम लोग पार्टियों को कहते हैं हम लोग आपको फंड देते हैं, ये हमारी बड़ी पाकिस्तान की बड़ी सोसाइटी है, पाकिस्तान के वीजों का कुछ करें फंड, हम आपको मतलब हम आपकी पार्टी को अगले इलेक्शन में इतना फंड दे दें, ये कर करें आप लोग हमारे साथ मीटिंग, मीटिंग्स होती हैं इधर भी। आप जब पार्टी को फंडिंग की जरूरत है, हम लोग इकट्ठे हो के सिर्फ बातें कर लें, कुछ उनको दें कुछ उनसे लें, कुछ देंगे नहीं कुछ मिलता भी नहीं,
1: और ये म्यूचुअल ट्रांसफर होती है।
3: बस ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैं देख रहा था कि माशाल्लाह हमारे पास इतने लोग हैं, इतना इतना अब जो पैसा हम कमा भी रहे उसको थोड़ा सा किसी अच्छी तरीके से थोड़ा टैक्टिकली लगाया जाए। जाहिर है ये है कि एक हम मुसलमान भी हैं, उसमें भी हमें काम करना चाहिए, तो जिस तरह पाकिस्तानी है पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरह हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इधर डेनमार्क में एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो तो सारे मानते हैं कि यार आपके तो वाकई पाकिस्तानी वेल एजुकेटेड अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी कमाई है, मगर हमारी मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी भी कौन सा ऑर्गेनाइज है सही तरह भी? सारे अपने अपने मतलब पाकिस्तान की पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर तो कम से कम एक करके किसी तरह हम बढ़े ना, कि एक हो के आगे जाके बात कर सके। अब इंटीग्रेशन में से आपको बोला था मोदी तो उसका हो गया है, उसके साथ किसी तरह अच्छे से गुफ्तगू करें जाके, मगर गुफ्तगू नहीं सिर्फ, सोशल डेमोक्रेट वाले पूछेंगे हमारे लिए क्या है, उनके लिए फिर कुछ होना चाहिए।
1: बिल्कुल आप जवाब,
3: हमें लॉबीज़म और इन से ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह काम करती है हमें वो तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, और इधर कम से कम ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो अल्लाह खैर करे इन चीजों को।
1: मैं आपसे आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ कि यहाँ बच्चे जो है चौथी जनरेशन आ रही है, तो पहलों को तो छोड़ दे, उन्हें कहना नहीं चाहिए, उनको सलाम पेश करते हैं, उन्होंने इन ममालिक को ढूंढा, उनकी वजह से बच्चे आए, फैमिलीज आई, बड़े हुए, दामाद आए, बहुएं आई, ये सारा सिलसिला उनको जो है क्रेडिट जाता है, लेकिन अब हालात तब्दील हो चुके हैं, यहाँ की सियासत है, रहते इन ममालिक में सियासत हम अपने ममालिक की करते हैं, वहाँ की पार्टियों की करते हैं, उनकी हम पार्किंग प्लेस बनाते हैं, कोई भी कोई आ जाएगा तो यहाँ के जितने भी सफरा हैं वो कहते हैं कि बेशक आप सियासत करें, अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में जा करें या डनमार्क की सियासी पार्टियों की सियासत करें। इस तरफ लोगों को किस तरह के आप मैसेज देंगे?
3: उनको बस यही दूंगा जी कि पाकिस्तान की भी सियासत करें, मगर इधर जो आपकी अब इतनी क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बन चुका है सियासत के अंदर, इधर थोड़ा सा उसको यूज करें ना जी, इधर भी हमें बताएं कैसे करना है, क्योंकि सियासत एक चीज है जिस मुल्क में भी हो उनमें काफी सिमिलैरिटी है। हमारे इतने बुजुर्ग हैं जो अगर पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं तो इधर भी हमें सिखाएं कुछ। अब कैंपेनिंग करते हैं पाकिस्तान स्टाइल से, इधर डेनमार्क में करते हैं अच्छे खासे वोट हासिल हो जाते हैं, तो ये नहीं कि पाकिस्तान स्टाइल से कैंपेन नहीं करेंगे आप तो इधर आपको फायदा नहीं होगा, फायदा होता है उस चीज का। तो पाकिस्तान में जिस तरह आप करते हैं, जिस तरह कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जिस तरह आपने वो कहते हैं ना कम कटवाते हो, इतना भी इधर हमें बताए ना, फिर हम इधर भी तो काम निकलवाए, थोड़ी सी बस एनर्जी इधर भी ले आए और अपना एक्सपीरियंस इधर हमें भी बताए कि किस तरह होता है। और जो घर बैठे हुए हैं ठीक है अच्छा है जिंदगी चल रही है, मगर कॉन्ट्रीब्यूट करें जिस तरह भी कर सकते हैं, माली करें या अपने एक्सपीरियंस से करें, अपने वो फाउंडेशन से करें, कोई टाइम देता है उसको टाइम देने दें। हमारा बस मसला ये जो आगे आने की कोशिश करते हैं उन्हें लगता है बस ये अपनी वाह वाह कराने आ रहा है। मैं सबको वही कहता हूँ, मैं जितना मुश्किल मेरे लिए
1: नहीं नहीं लोग एक और लफ्ज यूज करते हैं इसे जो ये पर्सनली प्रोजेक्शन चाहिए।
3: मैं वही सबको कह रहा था, मैं जितना मुश्किल मेरे लिए सोशल मीडिया चलाना है, अपना वीडियोज रखना, ये करना, वो मेरे लिए बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा टाइम लेता है। अब देखें ना इलेक्शन के बाद मैं भी थोड़ा ठंडा हो गया, सुकून का सांस ले रहा हूँ, मगर वही अब सारे कह रहे हैं यार तुम्हें सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना पड़ेगा, अखबारों में जैसा मलिक साहब हमारे कह रहे हैं लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, काफी कुछ आपको देना करना पड़ता है, इसमें बड़ी बड़ी सैक्रिफाइस, बड़ा टाइम है। और वही मैं लोगों को कह रहा होता हूँ कि ये टाइम मैं दोबारा अपना बिजनेस बना लेता हूँ, कोई कमी है हमें वही मैं पैसे कमा लूंगा, मगर ये मेरा चले शौक है, एक फिक्र है अपने बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा तो एक पेशा ही है। तो मैं कहता हूँ चलो मेरा तो डबल फायदा हो रहा है ये करने से भी, मगर ये काफी लोग हमारे लीक हो चुके हुए हैं क्योंकि उनकी जिंदगी चल रही है राजा साहब, घर बैठ के तनकीद कर देंगे मगर इन दी एंड काम है सबके पास, तनख्वाह आ रही है, गाड़ी है, घर है, खाना पीना है, इन दी एंड मतलब हमें उस तरह से मसला कोई नहीं, सो मेहनत कोई नहीं कर,
1: मेहनत कोई नहीं करते, बड़ी जबरदस्त बात की है, गिले शिकवे बहुत होते हैं, तनकीद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम जीरो होते हैं।
3: तो देखिए अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट का काम शुरू होगा, ऑफ फौस्ता अगले हफ्ते तक आ जाएंगी, पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑफ अभी हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में। ये है कि मैं इसी सोच में हूँ आपके रेडियो पे भी बोलता हूँ कि किस तरह जरा इकट्ठा किया जाए अपने लोगों को, जो जो मेन मेन हर हर अपनी तंजीम के जो सदर बैठे हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, इनसे पूछने के लिए कि आपकी तंजीम क्या बातें करने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। सब लोग तो बातें सारे कर सकते हैं आपके पास हर वीकेंड आके, मैं भी कुछ, मगर प्रैक्टिकली क्या करना है आगे से इसका कोई अब करना पड़ेगा हमें, जो सा नहीं है काम
1: मुझे भी लोग तनकीद करते हैं ये क्या आपने गंद डाला होता है, तो कहते हैं नहीं नहीं राय साहब छोड़े इन बातों को, लोगों की बात ना सुने, ये हमारा शुगल है।
3: बस फिर हम भी शुगल नहीं बन के रह जाएंगे, ठीक है जी, फिर जितने जो मैं जैसा करना वैसा भरना है राय साहब, अब क्या कर सकते हैं, मगर देखे मेरा तो छोटा मुंह बड़ी बात है, मेरे से पहले इन कामों में बहुत ज्यादा लोग एक्टिव है, मैं तो इसलिए कहता हूँ आगे हैं हम लोग।
1: चूंकि आपको लिखने पढ़ने का मसला नहीं है, आप लिखा करें अखबारात में लिखा करें, बिल्कुल ये आपकी जो टाइम निकाल के कभी कभी हफ्ते में, महीने में, दो महीने में आर्टिकल्स लिखने चाहिए।
3: हाँ जी वो तो है, असल में लिखने का मैं बड़ा बुरा हूँ, मेरा असल में अगर मैं अगर सैंपल से ना पढ़ा रहा हूँ ना तो मेरा तो न्यूज देखने का दिल मेरा भी नहीं करता, जो आपस की बात है, मगर ये है कि जरूरी भी बहुत है, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं ना घर छुप के भी नहीं बस बैठे रह सकते कि जी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सब काफी कुछ अच्छा चल रहा है, मगर अगर हमने कुछ किया ना तो फिर ये है कि बेहतर नहीं होगा कुछ भी,
1: कुछ बेहतर नहीं। जीशान आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हालत में हमें टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी,
1: सलामुअलैकुम। समाज नाज़रीन, ये थे ज़ीशान अली जो कि फुटबॉल ग्राउंड में थे, बच्चों के साथ फुटबॉल का मसला चल रहा था अपने बच्चों के साथ उनका, ये टीम वर्क होता है, उसके बाद एलर्जी भी उनको थी लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम दिया तो सामान नाजरीन हमारा काम है, हमें जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है आपके साथ शेयर करते हैं। हम कोई पुलिस मैन नहीं है, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना। कोई देना चाहता है उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, लेकिन हमारा किसी से मुतफिक करना ज़रूरी नहीं है।
4: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
1: सामान्य नाज़रीन, मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम आज बहुत अच्छा है। बादल भी हैं, धूप भी हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। सियासी मौसम भी अच्छा भी है और मिला जुला भी है। गैर मुल्कियों के बारे में या हुकूमत के बारे में, डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क के शहरियों के बारे में, तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हैं तजिया निगार अदनान अली अमीन, हमारे साथ मौजूद है। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
5: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, साहब कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, आप सुनाएं। ठीक है अदनान, आज मौसम के लिहाज से जो सियासी खबरें हैं, आज क्या ब्रेकिंग न्यूज ला रहे हैं, क्या कमेटियों में लोगों को जगह मिल रही है, बहुत सारे धमाके हो रहे हैं सियासी?
5: हाँ राजा साहब, धमाके तो काफी हो रहे हैं, क्योंकि आप देखा जाए तो टेक्निकली जो वेल्स हैं वो बन गई हैं और आस्ता आस्ता अपना क्या कहते हैं काम करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा तो ये होता है ना, ये वेल होती है जिसे कहते हैं फैंसी वेल, जिसमें ये सारा बजट वगैरह और वो आता है, और उसमें बिगेस्ट सरप्राइज ये है कि उसकी जो चेयरमैन है वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंग्लिश लिस्टिंग की लड़की है, जिसका नाम विक्टोरिया विल्स कुर्सिस है, क्योंकि वो उसकी माँ जो है वो है मेल में अमेरिका से, मतलब कि वो भी आधा। तो टेक्निकली देखा जाए एक बड़ी पोस्ट पे क्या कहते हैं एक बैकग्राउंड उसका उधर से भी उसकी माँ है और उसका एक हिस्ट्री भी है उसके अंदर, और वो उस पर क्या कहते हैं उस सुलवर में बैठ गई है। और उसमें सरप्राइजिंग ये है कि जो वाइस चेयरमैन है वो टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब कह लें कि ये ऐसी उजवेल होगी जिसके अंदर दोनों का क्या कहते हैं टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि इंग्लिश लिस्ट ने एक तरफ जाने लगेंगे और वो डेफिनेटली दूसरी तरफ जाने लगेंगे। मगर टेक्निकली देखा जाए तो उलनिंग के पुलसीत के अलावा वैसे तो उनकी काफी चीजें आपस में मिलती भी हैं, क्योंकि वो भी पेंशन के बोल पे बोलते हैं और इन चीजों पर बोलते हैं, तो बंदा कह सकता है वो एक किस्म का उनका होपफुली अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरा ये है कि 10th फॉल के 25 जो है वो इंटरसाथ वेल के परमानेंट पोस्ट पे वो बैठ गए, वो 2024 से बैठे हुए थे और वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह से क्या कहते हैं काफी तब्दीली आई है, काफी बॉल क्या कहते हैं चेंज किया गया और काफी क्या कहते हैं बॉल वगैरह फेंके गए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अब अपना काम शुरू कर देंगे और अपनी चीजें क्या कहते हैं आस्ता आस्ता डेवलप ऑफ ले हैं और उन पे अब क्या कहते हैं किस्म का काम शुरू हो जाएगा। सियासी ब्रेकिंग न्यूज पे ये भी है ना कि 11, 12, 13 तारीख को फॉल के मौजूद होती है पावल के अंदर, जहाँ पे ये सारे खड़े जाते हैं, तो ये तो वहां रवाना हो गए हैं और डेफिनेटली वहां पे क्या कहते हैं सख्त मुकाबला आएगा, क्योंकि दो पुराने जमाने में जिस तरह होते थे ब्लॉक, उस किस्म के ब्लॉक आ गए हैं ना, कह रहे हैं होल ब्लॉक और एक फ्लो ब्लॉक है, और देखते हैं किस बार कितने हैवी अटैक्स एक दूसरे पे होते हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि लास्ट लोके पे तो हो रहे हैं कि वो उसने पिथावरी की है फ्लो ब्लॉक के साथ, तो ये तो एक क्या कहते हैं सिलसिला शुरू हो गया है। उसके अंदर ये भी है कि जैसे आपको मालूम है कि पिछले दिनों में उलनिंग तो पैक भी बड़ा हार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि मोटरस्पोर के भी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, टेंसपॉल के पच्ची पे कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो वही बात है कि अब देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या बनती है, कि वो खड़े होते हैं कि इससे और स्ट्रॉन्ग करना ना हो जाए, क्योंकि ये काफी लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि इसके अंदर वजह क्या है। तो वजह वो यही है कि जो टेंसपॉल के पच्ची और टेमस के मुखाड़ हैं उनने उलनी के पुलसी को बहुत ज्यादा उठाया हुआ है। एक और मैं चीज लोगों को बता दूं कि जिनके पासपोर्ट होल्ड हुए थे इलेक्शन की वजह से, वो 3-4 मंथ और न एक्सपेक्ट करें कि वो पासपोर्ट की तरफ आएंगे। जो मैंने उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सुनी थी वो यही था कि हम इफ्ताह तक पहुंच जाएं, तो अब देखते हैं कि जब बैठते हैं तो क्या क्या क्या स्टेटमेंट इस पे आती हैं।
1: अदनान, ये जो फिल्मी डायलॉग्स की तरह बातें की जाती हैं कि ये हो गया वो हो गया, अब अगर इन्हीं सिस्टम की बात करें तो वो उनकी जो है उस वेल की जो है वो चेयरमैन बन गई हैं इन्हीं सिस्टम वाले, तो वो ज़रा जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में ज़रा वो अच्छी तरह वो इनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
5: सर मैं एक बात आपको कहूं कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला रहना हुआ तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को मिलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है।
1: और तो दांतों के इलाज के लिए उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरे ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज इतना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
5: राजा साहब उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है, दूसरा कैपेसिटेट का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1000 कमी है डेंटिस्ट की, टेंप्लायर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इस लिस्टर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी खास थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा, और जो इरागन है जो नई सोनस मिश्रा बनी है वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाना है। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट पंक्चरिस्ट जो इनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाने तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक कैंपेन ने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता है तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तब्दील करके ला के इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी।
1: सबसे पहले जिस तो तरह बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
5: नहीं राजा साहब, अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त। मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है, मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन से लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फैंस मिनिस्टर स्टार्ट टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फैंस वो नए आ गए, पुराने हट गए, तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बिजता वाले ने तो ये किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी, और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से होने हैं और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में कमिंग डेज में कैसे ये
1: अदनान कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास गई है?
5: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास। جو اس کے پاس ہے.
1: تو آپ دیکھتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے لیے بات تو بڑی کرتے ہیں, سیف والے بھی بڑی بات کرتے ہیں, ریڈیکل ونسٹا والے بھی ہمیشہ ووٹس لیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ کے جو انٹیگریشن کے منسٹر ہیں انہوں نے بیان دیا, تو اب بات تو پتہ لگے گی کہ جو جو ان پارٹیوں میں وہ کس طرح اپنا رول ادا کریں گے.
5: صاحب آپ ایک چیز میں سے یاد رکھنا کہ اولنی پولٹیکن کا جو نیگوشیشن اس کنگز کونلے کے اندر نہیں لکھا گیا ہوا, مگر اس کے اندر یہ بات ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ سیٹنگ گورنمنٹ ہے. آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس کے اندر سے لاس لوگے گا اور میرے خیال ان کے منتحدہ ڈالے جائے نا تو وہ بن جاتے ہیں قریباً 52, اور وہ مطلب پہلے ہی اس بلاک کے اندر کلیئر چل ہے کہ سام یولنی پولٹی کو نہیں چاہیے. ٹیکنیکلی پارلیمنٹ کے اندر پھر آپ لوگ پرنس کا بھی ڈال لیں, نیپال بھی ڈال لیں, پیسوال کے پچی بھی ڈال لیں, تیمس کے مکھاڑا بھی ڈال لیں, تو یولنی کی پولٹی جو بن گئی ہوئی ہے وہ وہاں پہ ہی رہے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑی سخت ہو جائے مگر وہ دیکھا جائے گا. کیونکہ جیسے بات چل رہی ہے ابھی کہ ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کو باہر سے کسی انکلوڈنگ ڈینس کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ لوگ شادی کر لیں یا کوئی چیز کر لیں تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے, مگر جو نیا بندہ لا رہا ہے ساؤتھ ایشیا سے جس وہ پوری فیملیوں کے ساتھ آ رہا ہے, تو یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا یہ بہت دیکھی جا رہی ہے.
1: تو یہ تو غیر ملکیوں کو پوچھنا چاہیے نا کہ اگر آپ نے جن جن کو ووٹ دیے ہیں وہ بولتے کیوں نہیں ہیں.
5: ارے صاحب یہ تو وہ ان کو ہی پتا ہے نا, یہ تو کوشچن اس لیے ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ میں ایک یہ الیکشن جب ہو رہا تھا, الیکشن کے دنوں میں جو بیٹ ہو رہی تھی وہاں پہ نا ایک چھوٹی ساری بات شروع ہو گئی کیونکہ رومال پہ چاکلیٹ پر بیٹ شروع ہو گیا اور وہ پریپریشن کے ساتھ آئے ہوئے, تو مجھے پتا تھا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ, اس کی بھی پہنتی تھی وہ جیپ جیپ اسٹینڈ اس کے تھے, میں یہ میری بیوی کا راج تھا, وہ یہ کہتے تیری بھی شامت آ جائے گی. میں نے کہا دیکھ میں کہتا ہوں میری شامت نہیں آئے گی, یہ چپ کر جائیں گے. وہ کہتا ہے, میں نے کہا ایک بات مجھے بتا, تم نے مجھے سوال ہی کون سا کیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا, تمہاری بھی شادی ہوئی. کہتا ہوں کہتے تم اپنی بیوی کی ڈیسیشن سپورٹ نہیں کرتے. کہتے میں اپنی بیوی کی ڈیسیشن سپورٹ نہیں کرنی تو کس کی ڈیسیشن سپورٹ کرنی ہے. تو میں نے کو سے کہا تو تم میرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے کہ میں کیا کروں کہ میں اپنی بیوی کے اگینسٹ چلا جاؤں کہ وہ رومال پہنتی ہے. اور ادھر جتنی سیل تھی وہ سارے چپ ہو گئے. وہ سارا ایک بات میں بندہ کہتا ہے تو نے جواب, میں نے کہا تو میں نے اس کو جواب صحیح دیا ہے, اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو سپورٹ کرے گا, میں سپورٹ کروں. میں نے کہا بات ہوتی ہے کہ آپ کرنے کی, اب جتنی پارٹی والے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو یہ سوال اپنی پارٹی سے پوچھنا چاہیے. میں نے جب پوچھا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپس کی طرح ہم نے کیا, اب اس کو ہم تبدیل کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا اب دیکھتے ہیں, اب نیا بیٹھے موتوز کو میں ڈیفینیٹلی اس سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ وہاں سے تو کھلا لا رہے ہیں مگر جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں آپ ان کو پولتے نہیں دیں گے تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا کچھ کریں, تو آپ کی تو پرابلم سیم ہے. اس لیے آپ کو پہلے فرسٹ پریورٹی یہ کرنی چاہیے کہ جو یہاں پہ ہیں ان کو ساری سہولتیں دیں, اس کے بعد دوسری طرف جا کے دیکھیں کہ آپ کو کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. کیونکہ یہاں کے لوگ چھوڑتے جائیں گے, آپ باہر سے لاتے جائیں گے, موت میں وہی بیان دیں اگلے الیکشن میں, ایک اندر آئے ایک باہر آئے. میں نے کہا اس ڈیبیٹ کو ختم کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ کرنا پڑ رہا ہے, یہ نہیں کہ ہم سیم طریقہ بار بار ایک کرتے رہے اور وہ بھی بار بار ایک بات کرتا رہے اور ہمارے سارے کہتے کان جو ہے نا وہ تانگا پڑ جائیں اس بات کو سن سن کے, اور خیر میں یہ ہو کہ ہم کہ چلو باہر پہ اسی کچھ اور ہی کریے.
1: حضران یہ آخری سوال ہے, اسی پر کلوزنگ کریں گے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ غیر ملکی جن پارٹیوں میں آنے والے دنوں میں کیا کریں گے؟
5: میں اس پہ کامنٹس کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں مجھے نہیں پتا. میں نے آپ جیسے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, میں نے آج بھی کہا ہے کہ اب ایک غیر ملکیوں کو ایک قسم کا کیا کہتے ہیں سٹینڈ لینا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ کا میرے سے بڑے ہیں, آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پاکستانی کمیٹی کوئی بڑا سا ایونٹ کر سکی ہوگا اس پلیس پہ کر سکے نہیں. دیکھیں جہاں تک میرا نالج ہے انڈین یہاں پہ ہمارے بعد آئے ہیں, वो ने परमिशन लेके वो वॉल्व्स प्लस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे, क्योंकि वो क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए। तो यहां से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े तो हम क्यों नहीं कर रहे। हम तो इधर अब कह लें तकरीबन 56 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
1: बड़ी अच्छी बात की है, इंशाल्लाह इस पर बातचीत जारी रहेगी। दान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
5: ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो के तजिया करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हमारा किसी से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
6: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अमीन तजिया नगार हमारे साथ मौजूद है। दोनों को खुश आमदीद भी कहते हैं और मैं माइक जो है शाह साहब के हवाले करता हूँ।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूर साहब, आपको, अदनान साहब को और आपकी टीम और जितने लिस्टर नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आज मौसम जो है पहले तो धूप निकली हुई थी लेकिन अब फिर दोबारा मौसम जो है वो टेम्परेचर इतना भी बुरा नहीं, अच्छा टेम्परेचर है। मौसम जो है वो यही समझ लें कि हम लाहौर से मरी आए हुए हैं और मरी में रह रहे हैं। बचपन में सुनते थे माए कहती थी कि जहाँ पुत्र तुम तत्ती हवा आना लगे, वो ऐसी तत्ती हवा से हम बचे हैं कि हम यहाँ बैठ कर तो सोचते हैं कि कब हमें गर्म हवा मिलेगी, लेकिन ठंडी हवाएं जो है हर वक्त वो माँ की दुआ के साथ हमें यहाँ मिलती है। तो आते हैं कल की सियासत पे और आज की सियासत पे। अदनान, मेरा ये सवाल आपसे है कि आप यंगस्टर हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं इस वक्त नेशनल लेवल और लोकल लेवल की दोनों सियासत को आप बाखूबी समझते हैं। ये मॉडर्न बुस्को का कल जो बयान था इसके ऊपर बहुत ज्यादा लेदे हो रही है, मुझे टर्किशों ने भी, अल्बेनियों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी काफी टेलीफोन किए हैं, आज भी किए हैं, और उन्होंने कहा कि इसका जो फेसबुक पे लहजा था, इसने जो बार बार गुस्से में ये कहा है कि तीन दफा कहा है कि क्रिमिनल्स उड़ेनिंग, तो ये क्या सिर्फ अगर क्रिमिनल पे ही बात रख लेता तो, या क्रिमिनल उड़ेनिंग एक दफा करके तो काफी था, तो दो तीन दफा, और फिर उसका जो इंसेक्ट है जो उसकी मुझे भेजी गई है फेसबुक की, उसके ऊपर तो उसने बड़े इतनी सख्ती तो चेहरे पे आपने कभी इंगा सोएवे की भी नहीं देखी थी और इतनी मॉडर्न मैसेज भी की नहीं देखी थी। इसके बारे में आप पूरी तरह रोशनी डालें क्योंकि आप इसकी पार्टी के हैं। क्या ये सोशल डेमोक्रेट की जैसे मेजर फेडरसन कहती है कि मैं ब्लू ब्लॉक से ज्यादा वोट लूंगी और इस तरीके से, तो क्या ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है कि ये अब सख्त से सख्त बयान दे ताकि ये रेसिज्म को जो है वो हवा देना चाहते हैं डर्मा के अंदर? क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि मेजर फेडरसन के ही सोशल डेमोक्रेट के ही जमाने में सबसे ज्यादा क्रॉन बर्निंग हुई थी और फिर पाबंदी भी इन्हीं के जमाने में लगी, तो क्या अब ये दोबारा कोई ऐसा माहौल बना रहे हैं?
8: जी साहब, इसमें तो दो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि उसका जो है जिस तरीके से उसने कहा है ये मुझे नहीं क्या पता कि उसको वो इतना अग्रेशन क्यों हुआ है। मैं उसके अंदर तो नहीं हूँ मगर मेरे ख्याल से अग्रेशन इसलिए भी आ रही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जब हुकूमत बनी थी ना तो पहले दिन से ही मॉक मीटर्स बेचने और इनके स्टॉल पे आने ना टेक्निकली बहुत सख्त अटैक कर दिए थे कि अब बहुत सारी लिंपल से आनी है और क्या कहते हैं बहुत सारे आयन और कानून क्या कहते हैं टूटते हैं। उसके अलावा ये भी थी कि कुछ इनके पास कुछ रिपोर्टें आ रही थी कि जिसके अंदर पॉलिटिकल असाइलम जिनको मिला हुआ है उनके कुछ केसेस है और वो के उस पर भी कुछ इनका क्या कहते हैं था कि ये लोगों को हम लाते हैं तो फिर ये होता है। میرے خیال سے یہ سٹیٹمنٹ جو اس نے اگریشن میں دی ہے, جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں, جہاں تک مجھے اس پہ پتا ہے, وہ اس طرح کا نیچرا کا بندہ ہی نہیں ہے. تو اس کے بڑے کیا کہتے ہیں, تلقات ہے, میرے ساتھ بھی اس کا ہوا ہوا ہے, ہمارا جو کونسلر یاسر اقبال اس کے ساتھ بھی, اجاز بہاری صاحب بھی جو کونسلر ہے ہمارے, اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو اس نے یہ کیوں اسٹیٹ بھی دیا, یہ تو ہمیں جب وہ ہم سے کبھی ملے گا تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں. پارٹی کی پالیسی یہ ہے جو میں آپ کو مینشن کر دوں, جو ہم نے الیکشن میں بھی کہا تھا اور جو ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, کہ جو یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور جو اس سوسائٹی کا حصہ بن کے ہوئے ہیں وہ موسٹ ویلکم ہے اور ان کی ہمیں ضرورت بھی ہے. ہاں, جو اس سوسائٹی کا حصہ نہیں بننا

0: चेंज कराने की कोशिश की थी कि जो इस सोसाइटी का हिस्सा बन गए हुए हैं उसको हम कुछ नहीं कहेंगे और उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो क्राइम करते हैं और जो पार्टिसिपेट ही करना चाहते हैं इस मुल्क में, उस पे पॉलिसी इनकी थोड़ी हार्ड लाइन है। और वो इसलिए क्योंकि जैसे आपको मालूम होगा कि ये जो कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है, ये भारी सबको पता है, आपको भी पता है शाह साहब के, इसका तो लास्ट लुके भी है। और लास्ट लुके की आपको पता होगा कि 2001 से लेकर 2011 तक उसकी कौन सी पॉलिसी थी। तो ये जो बहस जा रही है ना कि ये लिंपल से हो सकती है,
1: ठीक है
0: ये
1: ठीक
0: लिंपल
1: है,
0: से कौन सी।
1: अदनान अदनान ये ठीक है, लेकिन रीजन ये है कि जब हमारा डेनमार्क का गुण लॉ जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन जो है, वो यहाँ पे मेंस का गाड़ी और फ्रीडम की बात कर रहा है। और जब आप अपने मिनिस्टरों को सुनते हैं, आप इंगा स्टॉयबे को देख लें, आप लार्स ल्यूके को देख लें, आप मॉडर्न मैसरस्मिथ को देख लें, आप मेडल फेदर्स को सुनकर देख लें कि ये इतनी इतनी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए ये एक ही ये बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी इससे अपना बुस्को ने किया है। मसला ये है कि क्या ये फोर्स स्केल्स में हैंडल नहीं गया कि एक बच्चा जो डेनमार्क में बॉर्न हुआ है, अगर उससे क्राइम होता है तो उसमें ये देखना जरूरी है कि एक वाइट है तो वो यहाँ का है और एक ब्राउन कलर का है तो उसको बाहर भेज दिया जाएगा। क्या ठीक है इस बात को? मैं समझता हूँ कि कोई बंदा यहाँ पे असाइलम लेता है या कोई बंदा यहाँ पे आकर जॉब लेता है और वो इस तरह के कत्ल कत्लोगारत करता है, क्राइम करता है, बड़ा क्राइम करता है, तो उसको उस कर दिया जाता है, तो वो तो हम कहते हैं कि भाई ये इसको पता था कि इस मुल्क का जो हालात है वो इस तरह के हैं और इसके साथ इंसाफ हुआ है, इसको वापस जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न हुए हैं और अगर वो मिस कोई गलती से कोई ऐसा स्टेप उठा लेते हैं कि उनसे कोई मर्डर हो जाता है या उससे कोई ऐसा काम हो जाता है जो ड्रग्स का काम हो जाता है, कोई ऐसा उसके ऊपर इल्जाम आ जाता है, तो उसको ओबियस करना और डेनिस को जो है उसको वाइट आदमी को इन्होंने जो यहीं पर रखना है, तो इस फोर्स स्केल्स के ऊपर जो है वो बात लोग पूछ रहे हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये फोर्स स्केल्स पे हैंडलिंग क्यों है।
0: शाह साहब, इस पे तो ये देखिए, ये तो हम भी कहते हैं कि इस पे फॉस्केस पे हैरन नहीं होनी चाहिए, और इस पे हमने काफी क्या कहते हैं आवाज उठाने की कोशिश भी की है और क्या कहते हैं इस पे बातचीत भी करने की कोशिश की है। मगर मसला इसमें ये है कि इसके अंदर जी मसला ये हो जाता है कि जब हम बात करते हैं ना तो वो एक टेक्निकल पॉइंट हो जाते हैं, और मेजोरिटी इसीलिए हमने एक सोल्यूशन लाने की कोशिश की है। और हम हमेशा यही कहते हैं कि एक एक क्या कहते हैं एक बिग स्कॉल में एक चीज को ही लेके जाना चाहिए, और यही हमने एक जगह थे, हम डिबेट में थे, वहां हमने फिर वो बात की थी और उस पर हमें अभी तक उम्मीद है इससे थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगी। मगर ये तो गलत है कि यहाँ का जो सिटी सेंटर और जो यहाँ पैदाइश हुई हुई है उसको भी इस करते, अगर वो देखे अब देखे क्या होता है। और आपको एक चीज मैं याद करा दूं, मुझे लगता है कि मॉर्टन पिलस्कॉ को जिस दिन ये उसने स्टेटमेंट दी थी ना, उस दिन ना ये जो आपको तो मालूम होगा कि इनने पिछले साल एक लॉ बनाया था 22-23 में भी के उल रीजनिंग का, और उसी दिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक डिसीशन आई थी जिसके अंदर इनका वो जो आयन और कानून था वो एक किस्म का लागू नहीं होता। तो हो सकता है कि इनके अंदर थोड़े बहुत सब के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो कि हमने ये कानून बनाया है तो ये चालू नहीं हो सकता, मगर वो बाद में हमें पता चला था कि उसके अंदर वो जो कानून है उसके अंदर एक दो चीजें ने खुद क्या कहते हैं अब लाने लगे हैं। तो फिर आगे मगर देखते हैं कि लाते हैं कि नहीं लाते। ये बात सही है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपको मालूम होगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन ह्यूमन राइट्स है वो बार बार बोलता है कि आप वो कानून बनाए जो एक जैसा हो, और देखते हैं आप फ्यूचर में क्या होता है। हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेनमार्क में, हमें उम्मीद भी है कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे।
1: दनान ये आखिरी बार मैं आपसे पूछूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैं पढ़ रहा था।

0: स्पेशल पैराग्राफ को पढ़ रहा था जहाँ पे काफी 8-2 फोर्सेस लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके अंदर जो राइट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आप चेकोस्लोवाकिया, एक्स चेकोस्लोवाकिया, रशिया, पोलैंड कहीं से भी यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आकर रह रहे हैं, सेकंड थर्ड जनरेशन हैं, तो वो डेनिश ही कहलाएंगे, यही के वो बशिंदे होंगे और हमारे लिए भी वही कानून है जिसके तहत हमें यह मिला। अब जो आज लोगों ने ज्यादा वजन डाला है वो ये, वो आपकी बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। वो कह रहे थे कि हमें, इससे पहले कि मैं आपके तरफ हुआ हूँ, जो वो आप मुझे मॉडर्न मैसन स्मिथ का बता रहे थे, उससे पहले मैं आऊं, मैं आपसे ये आखिरी पूछना चाहता हूँ कि अब लोगों की थर्ड और फोर्थ जनरेशन यहाँ पे पैदा हो चुकी है, और थर्ड और फोर्थ जनरेशन से अगर ये नुक्स होता है तो उनका कोई तलक नहीं पाकिस्तान से, सोमालिया से, किसी अरब ममालिक से, क्योंकि उनका जो दो तीन जनरेशन जो हैं वो पैदा ही डेनमार्क के अंदर हुई हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे जो सियासी पार्टी है या जो हमारे लोग कम्यूनों में बैठे हुए हैं या जो हमारे एक्टिव लोग हैं, वो इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं कहते कि ये जो कानून है ये बहुत ही हमारे आईन के खिलाफ है, क्यों नहीं इस पे बात करते?
1: सब ये बात मैंने भी की है, क्योंकि जब हमारा, जैसे आपने भी पॉइंट की है, जब इलेक्शन हुआ था ये अक्टूबर नवंबर में, उनके इलेक्शन आगे थे, तो बड़े लोगों ने हमसे सवाल किया था और हमने लोगों से यही कहा था कि हम लोग लेके जाएंगे इस सवाल को आगे, और हम लेके भी गए थे, और इस पर हमारा क्या कहते हैं पॉइंट नोट किया भी गया था। उसके अंदर ये किया गया था कि फिर ये था कि वो सारी चीजों को देखेंगे, और उस चीजों को वो देख भी रहे हैं और वॉच आउट भी कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर कुछ तब्दीली लाई गई थी, हमें पता है। अब ये देखने की जरूरत है कि अब ये जब हुकूमत बैठेगी और ये अपना काम शुरू करेंगे तो इन इन बातों पर गौर किया कि नहीं। और आपकी बात सही है कि जितना बेहतर तावन होगा कि हमारी कम्युनिटीज बैठे, एक क्या कहते हैं लाए अमन बनाए, एक खत लिखे जिसमें अपने पॉइंट जो है इन सब टॉप मिनिस्टर, जिस तरह इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनको खत लिखे ये कि अब हम फोर्थ जनरेशन पे पहुंच गए हैं, तो ये क्या चीज है। और मैं आपको एक चीज कह दूं कि कमिंग डेज में ना एक फैसला आएगा जिस पे डिपेंड करेगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, ये कानून है। आपको मालूम होगा कि CT2 में रिसेंटली एक वाकया हुआ था जिसमें एक 16 साल के बच्चे ने छुरा मार दिया था,
0: जी
1: उसको उन विजिटिंग स्टॉप मिली हुई है प्यू हाथ से, मगर अब उसका केस उस्तालेंस हाथ में जाना है, तो उस्तालेंस हाथ के बाद पता चलेगा कि जो कानून इन्होंने बनाया उन विजिटिंग का, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और इसको क्या है। क्योंकि पहला डिसीशन तो जैसे सब आपको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था जुमे वाले दिन के, आप किसी के केस नहीं डिसमिस कर सकते, इवन कि आपने कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भूल गए हैं, तो वो बंदे का काम नहीं है, वो अटॉर्टी का काम है कि वो फाइंड आउट करे कि इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं। तो ये क्या बंदा कहता है कि एक बहुत बड़ा फैसला था, और इसके बाद क्या कहते हैं आइन और कानून को देखा जाएगा और फिर देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होता है। मगर ये बात आपकी कोरेक्ट है, हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग इस बात को लेकर आगे जा रहे हैं कि हम फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में हैं, तो अब तो आप तब्दील कर लें, ये मतलब नहीं है कि आप जिस तरह इंग्लैंड जा रहा है दूसरे मुल्क से कि वहाँ 7वीं 8वीं जनरेशन पे रेकनाइज किया था, जरा थोड़ा क्या कहते हैं टाल ले। क्योंकि दूसरी बात ये होती है कि बंदा विंकल से देखे ना, तो बंदे को ये भी देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आगे हुए हैं वो इस जगह पे बैठ गए हुए हैं कि जहाँ पे बड़ी ज्यादा जरूरत है। सारे ये किस तरह से मौत में स्प्लिट में इलेक्शन में शुरू हो गया था कि एक मुसलमान अंदर आए एक मुसलमान बाहर आए, जब हमने उसके बारे में पूरी क्या कहते हैं रिपोर्ट बना के दी थी तो आप माने कि उनके फेसेस रेड हो गए थे कि आप लोगों ने तो ये मुल्क ही क्या कहते हैं बंद हो जाएगा कि ऐसे हम करें। तो मैंने कहा यही तो हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग बोलना शुरू हो जाते मगर आप कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते कि यहाँ पे क्या होगा या इंटरनेशनल बिजनेस लेवल पे क्या होगा। मैंने कहा हर पर्सपेक्टिव को बंदे को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है वो मिडिल एशिया में बहुत है, आला का बहुत है, वेस्टा का बहुत है, नोरिस की फैक्ट्रीज पाकिस्तान इंडिया में है, यहाँ पे है, तो बंदे को बहुत कुछ देखना पड़ता है चीजों में।
0: नहीं, वो बात आपने बहुत अच्छी की है। अब थोड़ा सा आप मुझे जो बता रहे थे अपना मॉडर्न मैसेज फलके पार्टी का, उसमें थोड़ा सा आप आवाम को बता दें कि वो क्या बात थी और क्या उसके ऊपर लोग आपसे पूछ रहे हैं।
1: शाह साहब, वो ये हुआ था कि जब इलेक्शन का कंपेन शुरू हुआ था ना, तो इलेक्शन के कंपेन में ना उसने एक एक मोटम रखा था कि मैं कामयाब हुआ ना तो मैं एक मुसलमान बाहर निकालूंगा तो एक मुसलमान अंदर लाऊंगा। और ये बात उसने बड़ी क्या कहते हैं हाईलाइट की थी, और उसने ना ये बात क्या कहते हैं एक किस्म की ना तीसरे दिन ही उसने ये कर दी थी इलेक्शन पे। फिर हुआ था ये कि उसने ना जो जो क्या कहते हैं ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, फिर उसने अपनी जितनी उलन पुलची है ना, जो बहुत बड़ी थी पॉलिसी, इसने हमें पॉपुलेशन करने के लिए ना जो हमारी छोटी ईद थी ना उसके एक दिन पहले इसने अपनी सारी पॉलिसी बाहर निकाल दी थी। और इसके अंदर इसने ये भी लिखा था कि बंदे को ये जो उलरिस्ट स्टॉम है ना इसको और टफ किया जाए। तो यही इसका क्या कहते हैं बिग लड़ाई झगड़ा पड़ा था लास्ट लुके के साथ, क्योंकि लास्ट लुके ने डायरेक्टली पूछा था कि तुम ये जो बात कर रहे हो तुम किस बिनोर पे कर रहे हो, तो वही जो आप बात करते हैं, इसने कहा था कि मैं स्टॉप कराऊंगा ये एक मुसलमान बाहर हो जाए, मैं ये जितनी कल्चर सेंटर है जिसको हम पाकिस्तानी मस्जिद कहते हैं मैं वो भी बंद कराऊंगा, मैं उनको भी नहीं इजाजत दूंगा, मैं क्या कहते हैं शॉ क्लब भी बंद करूंगा। इसने ना कहते पूरी की पूरी जो अपनी लाइन है ना वो सख्त कर दी थी, और ये इसीलिए ये जो ब्लो ब्लॉक था ना ये इसीलिए इसकी हुकूमत नहीं थी बन सकती, क्योंकि ये एक अपनी क्या कहते हैं पॉलिसी पे था, ये इसने एक ही झंडा लेके आया था कि मैंने अपनी क्या कहते हैं ना जो मुसलमान है ना उनको पूरा टारगेट करना है, और इसने अपने पूरे इलेक्शन के कंपेन के अंदर टारगेट किया था एक एक लावा के। ये दूसरा इसका जो स्टंट था वो सारे मुल्क को पता है, ये जो जाके पेट्रोल पंप में सस्ती बेंजीन और डीजल दे रहा था लोगों को, बहुत स्टंट था, वरना इसने अपना पूरा कंपेन मुसलमानों के खिलाफ किया था। और अभी मैं आपको एक बात बता दूं व्यूअर्स को, मैंने इसलिए बात की है, जिस दिन से ये गवर्नमेंट बनी हुई है ना ये एक से एक एडवर्टाइजिंग फेंक रहा है, एग्जाम्पल ये फेंक रहा है कि हमारे जो कल्चर सेंटर है जिनको मस्जिद पाकिस्तानी समझते हैं वो है कल्चर सेंटर, तीन ही मस्जिद है डेनमार्क में लोगों को पता होना जिसको कल्चर सेंटर हम कहते हैं, मैं इसलिए उसको कल्चर सेंटर कह रहा हूँ क्योंकि जो डेनमार्क का क्रैक ड्राफ्ट है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कोई मीडिया वाला ना इस पर बात बात पे करे। अब उनको ऊपर ये लगा हुआ है, इसने डिबेट शुरू किया हुआ है कि जितने ये बन गए हुए हैं और बनाने देने चाहिए कि इनको भी बंद किया जाए, तो इसने ना पूरा मुसलमान को टारगेट किया हुआ है। और दूसरा ये काम कर रहा है कि कोई गैर मुल्की या कोई फॉरेन का कोई केसेस खत्म हुए हुए हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं मॉरिशस को जब जस्टिस मिनिस्टर था ना 2011 से लेके हिलेरी स्मिथ में, उस वक्त एक
0: जी
1: केस आया था, वो केस को ये हाईलाइट कर रहा है और उस पे मॉरिशस को टारगेट कर रहा है कि तुमने ये उस वक्त तुम्हारी गलती थी इसलिए ये सारे क्या कहते हैं उलझ नहीं हो रहे। और ये बात बड़ी जरूरी है कि हो सकता है कि ये भी चीज हो जिसकी वजह से मॉरिशस को उन्हें अग्रेशन दिखा दी हो कि मैं इतना प्लुर नहीं हूँ जितना हो सकता है, मगर वो बात ये आपकी चाहिए कि इस तरह करना नहीं चाहिए, ये स्पिन डॉक्टर जो होते हैं इनको बंदे को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए और बताना चाहिए।
0: अदनान, मैं नाजरीन को भी बताना चाहता हूँ और आपसे इसके सवाल भी आपके निकलेगा। मसला ये है कि डेनमार्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लॉ फोर्स बने जो आइन के खिलाफ थे, बाद में वो डिमोलिश हो गए, खत्म हो गए और उनको बैक लाइन कर दिया गया। हमें यहाँ पे रहते हुए 55-56 साल हो गए हैं इस मुल्क के अंदर, आज तक हमारी कोई ऐसी तंजीमात, खसूसी तौर पे जो सबसे एक्टिव लोग थे यहाँ पे वो पाकिस्तानी थे डैनिश सियासत के अंदर, आज तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर हम डैनिशों के साथ बात कर सके, डैनिश पॉलिटिशियंस के साथ बात कर सके, ہم منسٹرز کے پاس جاتے ہیں, منسٹروں کے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, انہوں نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو ان کی پارٹی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہوتا ہے. لیکن جو باول اینڈز ہے, جو ان کی کریس ہے, جس کریس کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, اس کریس میں ہمارے انفلوئنس نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں نہ ہی ہماری کوئی رسائی ایز اے پولیٹیشن جو ہے فسکیلی اوزبیک میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ایگزامپل میں میئر کو ملنا چاہتا ہوں البرسٹون کمیون کے اندر, تو میئر کا کوئی ٹیلی فون نمبر نہیں ڈائریکٹ جس کو میں اس کو کال کر سکوں یا اس سے ٹائم لے سکوں. مجھے صرف ایک انٹرنیٹ پہ میسج بھیجنا ہوگا یا ان کو جا کے ایک ریٹرن دینا ہوگا تو میں ان سے مل سکتا ہوں. تو کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ جو دو اب سوال شروع ہو رہا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں وہ ختم کی گئی قانونی طور پہ اس ڈنمارک کے اندر. پہلی تھی کہ یہ جو ٹلکٹنگ کیس تھا یہ ختم ہو گیا ڈنمارک میں, جو انہوں نے بڑی بہت زیادہ پابندیاں لگائی اور ہمارے بہت زیادہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے, سویڈن چلے گئے, ناروے چلے گئے اور جرمنی چلے گئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ٹلکٹنگ سے جو ہے وہ ختم کر دیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ صرف مسلمانوں کو انہوں نے زیادہ پرابلم دی. نمبر دو پہ انہوں نے ٹیکسی کا لاز بنایا تھا پرانا لا ختم کرنے کے لیے, تو وہ نیا لا جو تھا وہ اوبر کو اسی سپریم کورٹ نے ہائی سٹار نے یہاں پہ اس کو بین کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے, آپ ہمارے ملک میں بین ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ کسی کو اون ریسنگ کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس ملک میں نہیں آ سکتا ایک مخصوص پیریڈ تک. اب اس کے اوپر کوئی بین نہیں, ٹائم بین نہیں لگا تھا, لیکن یہ واپس اپنے وعدے سے پہلے ہی واپس آ گئی اوبر. اس طریقے سے پوری جو ہماری ٹیکسی برانچ ہے یا ٹرانسپورٹ برانچ ہے اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف سیاست دانوں نے ہلا کے رکھ دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو جو ہے پیرلل میں کہوں گا کہ سم فون انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ جتنے یہاں پہ ڈینش اوریجنل ڈینش ہے اور جو ہم لوگ ہیں انواندا جو 70s میں یہاں پہ آئے تھے, ان میں اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے سیز بہرنی کا یہ بہت بڑا فقدان ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی فوراً لے کے آ سکتے ہیں, لیکن ہمارے بچے جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں اپنی فیملیز کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے. یہ فورسز بہرنی کیوں ہو رہی ہے اور یہ ہائے سہا کے
1: نا کے نیچے ہو رہی ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ میں شروع سے یہ کہوں گا کہ یہ جو پورے فیملی والے یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں نا, یہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی اس میں کیا ہے, کیونکہ ان میں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بہت ساروں کو واپس بھی جانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کی جو انکم رکھی ہوتی ہے اور جو ان کے ڈیمانڈس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے اس کا کوئی یہ کیا کہتے ہیں سمجھ ابھی تک نہیں آئی, کیونکہ ہم نے اسی لیے نا آواز اٹھائی تھی ایک ٹائم پہ کہ یہاں پہ آپ پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیوچر میں کمی ہے لوگوں کی اور وہ پورے کرنے کی ضرورت ہے, مگر ہم نے میرے اپنا اور کچھ لوگوں کی رائے سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری پبلک یہاں پہ ہے جن کو ہم سیٹل کر سکتے تھے, تو اب ان کو کیا گیا ہے. اور یہ بات آپ نے میرے سے کیا, یہ بات ڈیفینیٹلی ارج کرنی بھی ہے پارٹی سے, پوچھنا بھی ہے کچھ لوگوں سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات رہی آپ کا جو دوسرا سوال تھا ٹیکسی کے بارے میں, وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں بڑی دفعہ یہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میرا بیٹا پوچھتا ہے, بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹیکسی اور اونپا کے اوپر اکٹھے رکھے ہیں. میں نے کہا مجھے کوئی پتا نہیں کہ پہلے ان کو کیا گیا تھا کہ یہ چل نہیں سکتے کیونکہ یہ آئنس کاپس میں نہیں تھے, پتا نہیں نے کیا بلنڈر کیے ہوئے تھے. میں نے کہا اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, میں نے کہا اس کی مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا ڈال رہا ہے, کیونکہ اس سے تو یہی ہوگا کہ رات تو ٹیکسی کا بزنس کم بہت ہو جائے گا اور ان کو مسئلہ پڑ جائے گا, روبا لے جائے گا. اور یہی تو آپ نے یہ مثال دیے, یہی تو سیم چیز ہو رہی ہے جیسے یہ ڈسٹریبیوٹنگ کرتے ہیں کھانے والے ادھر, جیسے آپ کو پتا ہے کہ جسٹس نے اپنے آپ کو لیو کر لیا کیونکہ وہ کہتے کہ دوسرے آ گئے ہیں اور ایکسپینشن ہے, तो ये बहुत सारी क्या कहते हैं आग चीजें हो रही हैं जिनको जरा बंदे को और से देखना चाहिए। और आपका जो तीसरा सवाल है उस पर तो मैं उस पर कोई कॉमर्स नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजर चुका हूँ, तो मैंने देखा हुआ है, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
2: चलें शाह साहब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अदनान देखें, हुकूमत ने भी वादे किए हैं, सात पार्टियां भी मिली हैं, सपोर्टिंग पार्टी भी मिली है, चार जमातों की हुकूमत है, तो दूसरे अल्टरनेटिव भी उनके साथ मिल गया है। तो वो उन्होंने कहा जी हमने अपने मुतालबात जो है वो बैकडोर मनवा लिए हैं, तो आने वाले दिनों में ये दांतों का इलाज, ट्रांसपोर्ट का मसले मसाइल या इस तरह के बयान आते रहते हैं, हुकूमत कितने मैंडेट से बनती है, क्या हुआ, किस किस का मैंडेट है, तो मैं चाहूँगा इसको ज़रा साथ लेकर चले।
1: राज साहब इस पे दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो हुकूमत बनी हुई है ना, इसको टेक्निकली कहते हैं मिंता चैसा कियांग, क्योंकि ये जो हुकूमत है ना मिंता चैसा कियांग, इसका एक फर्क होता है कि 82 सीटें हैं। ऑब्वियसली इंगसलिस्टन और अल्टरनेटिव इंगसलिस्टन की मेन पार्टी है, क्योंकि उनके साथ ये 90 से ऊपर हो जाते हैं। अल्टरनेटिव को भी इनने साथ रखा हुआ है वो पूछताछ बिल के लिए, मगर इसमें एक बिगेस्ट चेंज ये है कि ये जो 82 मैंडेट है ना, और जो इंगसलिस्टन का रोल है, इंगसलिस्टन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2011 में जब एलिसन स्मिथ ने गवर्नमेंट बनाई थी ना, तो एक टैक्स रिफॉर्म आया था, और वो टैक्स रिफॉर्म ऐसे बना था कि ये जो 82 मैंडेट है ना उसने प्लो प्लॉक के साथ बना लिया था। तो इसलिए इस बार जो इंगसलिस्टन वाले है ना, उनने एक किस्म का ये गवर्नमेंट से कहा हुआ है कि आपने वो दोबारा हरकत की जो आपने 2012 में की, तो फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी, क्योंकि टेक्निकली जो होता है ये मिंता चैसा कियांग बनी है, क्लियर चैसा कियांग जो बनी थी वो पिछली थी, जब ये मीरा कियांग बनी थी उनके पास पूरी सीटें थी अपनी, कि वो किसी की बात सुनने की उनको जरूरत नहीं थी, मगर अब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो प्लो प्लॉक के साथ भी पॉलिसी बना सकती है, और क्या कहते हैं अपने अलायंस के साथ भी बना सकती है। तो इसके लिए ये बात होती है, क्योंकि मैं आपको पहले एक बात एग्जांपल छोटी सारी दे देता हूँ कि इंगसलिस्ट ने पहले कह दिया हुआ कि आपने कोई टैक्स कट का काम करना है ना, तो आपको प्लो पछिया के साथ करना पड़ेगा, हम टैक्स कट के अंदर आपके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो वहां से आप देख लें कि ये एक नेगोशिएशन होती है। मिंता चैसा कियांग 2019 में भी थी, जब 825 बनी थी, अकेली बनाई थी, और जब लास्ट लोके ने बनाई थी 2015, खाली 2022 में कह रहे हैं किस्म की गवर्नमेंट जो थी ना वो प्लेयर चल रही, जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी हुई है वो मिंता चैसा कियांग है, क्योंकि उनके पास अपने 90 सीटें नहीं है, तो इसको मिंता चैसा कियांग कहते हैं, इसलिए उनको 90 सीटें पूरा करने के लिए अपने अलायंस के साथ चले जाए या प्लो ब्लॉक के साथ चले जाए, उनको 90 सीटों की है। और इसी तरह जैसे उलनिंग पुलसी को होगी, वो भी उन्होंने कोई सख्ती की या कोई चीज करने की कोशिश की तो उन्हें ब्लू ब्लॉक के पास जाना पड़ेगा, वो रेड ब्लॉक से फ्लेयर चल नहीं ला सकेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि है। मैं बस आपके व्यूज को आपको ये बता दूं कि उलनिंग पुलसी जो बन चुकी हुई है उसको लिम्पा करने का बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका फ्लेयर चल है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको खड़ा कर सकते हैं, मगर इसको लिम्पा नहीं कर सकते, जो बन गया हुआ है वो बहुत मुश्किल है कि वो चेंज हो, क्योंकि जो पार्लियामेंट का मैंडेट है वो स्टाम उलेन के पुल की हक में ज्यादा है, अनफॉर्चुनेट।
2: अदनान आप बहुत सारे काम करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, सारी पार्टियां क्या बात है आपको लेने के लिए तैयार हैं, SF आपको लेने के लिए तैयार है, रेडिकेट वेंस्टा आपको लेने के लिए तैयार है, दूसरी पार्टियां आपसे लेने के लिए तैयार है, सारी पार्टियों के साथ आप बात भी कर सकते हैं और आपकी बात को वो सुना भी जाता है, तो ये बाकी जो डिबेट शुरू हो जाती है जिसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट डिबेट शुरू हो जाती है उसको रोका कैसे जाए?
1: दूसरी पार्टियों के पास मैंने चेक करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि तुम 100 बिस्मिल्लाह काम करने वाले बंदे तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, वो कचेरी होते हैं। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि दूसरी पार्टियों के अंदर है डिबेट, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपना सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे क्या कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि मैं आपको ये एक बात मैंने जैसे आपको कि आप खुद खोल के देख लें, मैं जब फेसबुक खोलता हूँ, जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ, جب ٹویٹر کھول تو آگے یہی ہے کہ ہم اس وقت ٹارگٹ ہیں. تو اس کے اوپر کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹارگٹ کریں, ہم اس وقت فرنٹ پیج یہ کرنی چاہیے کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ہم چوتھی پانچویں چھٹی جنریشن ہو گئے ہیں, کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایک لیول پہ لائیں کہ جہاں ہم بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہم اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہیں. کیونکہ جب جتنی دیر تک ہم یہ نہیں بتائیں گے, ہم اپنے مسائل میں رہیں گے کہ ایک دوسرے کے پیچھے رہیں گے, تو کوئی فائدہ نہیں ہم ہوگا. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا,
2: ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. شاہ صاحب آپ آخر میں کیا کہیں گے؟ اپنے مہمان کا شکریہ ادا کریں, پھر پروگرام ہمارے پاس پانچ چھ منٹ ٹوٹل ہیں.
0: جی میں بالکل اگری کرتا ہوں عدنان سے. صرف میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب کسی قانون کے بارے میں بات کریں تو ہم اگر ڈینش آئین کو پڑھ لیں, کانسٹیٹیوشن گرون لا کو ذہن نشین کر لیں, اور بلکہ بک کو ساتھ لے جائیں, اور جس سبجیکٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے اس کے جو ہے وہ یلو لائنز لگا لیں, تو ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا کہ یہ جتنے بھی اولنگز لا گیونگ بنے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ سوامی جو ہے وہ خود ڈینشوں کے جو اصل ڈینش ہیں ان کی جو ہے ان کے اوپر پرابلمز آئی ہیں, وہ چیلنج ہو سکتی ہیں, اور ہمارے خلاف جو بنی ہوئی ہیں جو اب ہم لوگ ہیں ہمارے خلاف بھی یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم لوگوں کے پاس بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں, ہمارے پاس بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, پرابلم صرف یہی ہے کہ ان کو آئین کی معذرت کے ساتھ سمجھ نہیں. وہ لا فورس میں پڑھ کے تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, اس کو ان پر کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ پارٹیوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اگر ہم اس کو اومبسمین کو لکھ دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو قانون آپ لوگوں نے پاس کرائے ہیں یہ کتنے خطرناک ہے, اگر ہم اس کو یورپین یونین میں لے جائیں تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ بات کرنے کی ہے, ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے رہیں گے. تو میرا خیال میں عدنان آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جتنی پارٹی ہیں یہ پچھلے قانونوں کو لے کے چلیں گی, اور جو قانون انہوں نے بنائے ہیں وہ لے کے چلیں گے. ڈینٹس کا انہوں نے آج بھی اخبار میں دیا ہوا ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فاسٹ پینشنسٹ ہیں یا وہ جن کے کرونک سیڈم ہیں ان کو جنوری میں اگلے سال جو ہے یہ فری آف کاسٹ یا کچھ تھوڑا بہت پے کرنا پڑے گا, تو ان کو سہولتیں ہوں گی ڈینٹس کی. تو باقی پینشنروں کے لیے کیا کرتے ہیں, کیا ان کو بھی فری آف کاسٹ آگے ہمیں تھوڑا سا پیسہ دینا پڑتا ہے, لیکن کیا وہ بھی ٹوٹلی فری ہوگا, تو یہ دیکھنا پڑے گا. جو یہ انہوں نے کہا نا کہ 10 سال تک, تو یہ 10 سال میں کوئی بھی حکومت آ سکتی ہے, وہ اس کو دوبارہ چینج کر سکتی ہے, اس کو واپس لا سکتی ہے, اس کو نون کو ختم کر سکتی ہے. یہ کوئی آپ نے جیسے بتایا کہ یہ جو ہے مدرا ٹیل گورنمنٹ ہے, اس لیے میں اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب انہوں نے جو ماڈرن بلس کو نے جو پیغام دیا ہے اور جس فیس پہ ان کی ریڈنگ آ رہی ہے وہ صرف اس لیے بتایا گیا ہے بلو بلاک ہو کہ ہم آپ سے کم نہیں, ہم بھی جو ہے اولنگ ان کے لیے اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں, لہذا ہمارے ووٹروں کو دوسرے بلو بلاک میں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ بلو بلاک کے جو ووٹرز ہیں وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں کیونکہ ہم سب کے خیالات ایک ہیں. تو عدنان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آپ نے لوگوں کو اچھی اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ دن بہ دن جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں. اور راجہ کپور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم سب کو پلیٹ فارم مہیا کیا. باقی اللہ سب کا نگہبان ہے اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین, یہ ملا جلا آپ کی آواز کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کے ساتھ براہ راست حاضر ہے. سامع ناظرین, موسم بہت اچھا ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, سیاسی موسم جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے, اس کے بھی جو دھوپ نکلی تھی سیاسی دھوپ نکل چکی ہے, اب الیکشن مکمل ہو چکے ہیں, وزراء بن چکے ہیں, अब जब छुट्टियों पे जाएंगे, छुट्टियों के बाद ही कहीं आकर जो सितंबर अक्टूबर में ये सारी बातें करेंगे। तो हमने कहा क्यों ना साहब का पार्लियामेंटेरियन से जो है एक्टिविस्ट भी है और तजिया नगार भी है, वो बहुत सारे जो है एनालाइज भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को और मौजूदा कोपेनहेगन में सिटी काउंसलर भी हैं, तो क्यों ना उनसे जाना जाए कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर।
1: जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
2: सिकंदर मैंने छोटी सी तमीद बांधी है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके बयानात आते रहते हैं सोशल मीडिया पर, अखबारात पे भी आप कॉलम लिखते हैं, तो क्या हो रहा है, नई हुकूमत बन गई, आप क्या कहेंगे?
1: देखें, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि अभी हुकूमत बनने से कोई हफ्ता पहले आपको याद होगा कि मेरी कौमी अखबार में एक कॉलम मैंने लिखा था जिसके ऊपर मैंने कोपेनहेगन पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर मैं बोलता रहा कि जो इस वक्त एक मुसलमान औरतों पे और मुसलमान और मिनोरिटीज के घरों में जो सियासतदानों का फोकस है कि औरतें किस तरह के कपड़े पहने, स्विमिंग किस तरह करें, हाथ वो दें, ये सारी जो ये जो कानून बना रहे हैं, इस पे मैंने वहां बकायदा जो है पार्लियामेंट में भी बात की, मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा कॉलम लिखा, आपने पढ़ा होगा। तो हुकूमत जो अब बनी है उस पे जिस तरह के मैंने आपको अपना तज़िया दिया था कि पहले ये काफी सालों से जो कानून है फैमिली सैंक्चुअरी के, जो कानून है पासपोर्ट के, जो ये जितने भी कानून है इस पे इन्होंने जोर दिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप ये समझ ले कि आप ये घरों के अंदर घुसना चाह रहे हैं, और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी जो इन्होंने 77 पेज का जो मैनिफेस्टो लिखा है उसमें सबसे पहली गौर करने वाली बात जो हैरानअंगेज बात है वो ये है कि उसमें अब हमने जो सोचा था कि हम रेडिकल को वोट देंगे उससे हमारे हालात में बेहतरी, बात ही कर रहा था कि जो 77 पेज का मैनिफेस्टो इन्होंने लिखा है उसमें एक सिंगल हमारे लिए कोई नरमी नहीं है, एक भी कानून की, पासपोर्ट की, फैमिली सामफ्यूएं की, किसी भी चीज की हमारे मुतल्लिक कोई एक भी, एक सिंगल भी, यानी कि मेरे वर्डिंग्स आप जरा नोट करें, एक सिंगल कानून की भी नरमी नहीं आई। हमारे बारे में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है लेकिन जो लिखा हुआ है वो उस पे जो मेजर दो चीजें हैं उस पे मैं ये बताऊंगा कि एक उन्होंने ये लिखा है कि एक कमीशन बिठाया जाए, उस भी फॉर्म जो है इन्होंने अब तैयार करनी है जिसमें आप ये लोगों को जल्द से जल्द डिपोर्ट किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए विद इन द फ्रेम ऑफ द कन्वेंशंस, उनके अंदर रहते हुए किस तरीके से लोगों को छोटी सी सजा पे निकाला जाए। ये अब उसको जो बने हैं इंटीग्रेशन मिनिस्टर, इन्होंने और सारे मिनिस्टर जो है वो जरा मेरे ख्याल से जरा छुट्टी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने फौरन जो इंटीग्रेशन मिनिस्टर है उसको बयानबाजी पे लगा दिया। एक तो ये बात हो कि इस पे तफसीलन अभी आगे बात करेंगे। दूसरी जो मैं समझता हूँ कि जो बहुत एक फोकस है इनका, वो वैसे तो ये न्यूट्रल बता रहे हैं लेकिन जब ये सियासी काम अपना शुरू करेंगे तब ये फोकस होगा सिर्फ मुसलमानों पे ही, ये भी मेरी आज बात लिख लें। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक मेन मैनिफेस्टो में इन्होंने ये हमारे हवाले से डाला है कि जो नेक अच्छी सुशैल खंचौल है, यानी कि ये कहते हैं कि हम अपनी बच्चों को बच्चियों को कहाँ वो शादी करें, कहाँ वो किसके साथ उठे बैठे, फेस्टो में जाए ना जाए, स्विमिंग पे जाए ना जाए, कैसे जाए, ये जितने भी जिसको ये नेक अच्छी सोशल कंट्रोल कहते हैं, ये इन्होंने अपना एक मेन पॉलिटिकल जहां पे इन्होंने फाइट करनी है, जो इन्होंने काम करना है वो इन्होंने इसको अपने 77 पेज के मैनिफेस्टो में हमारे मुतल्लिक जो चीजें हैं जिसपे फोकस होगा, उसमें उन्होंने ये पॉइंट रखा है। तो मेरा आपको कहने का मकसद ये है कि पहले 20 सालों में इन्होंने जो घर के बाहर जो कानून है आप ये समझ लें उस पर इन्होंने फोकस किया और नाटका बंद किया है, अब ये घरों के अंदर घुसना चाह रहे हैं। और मैं देखे मैं समझता हूँ कि नेक सुशैल का सवाल बिल्कुल गलत है। अब अपने बच्चों पे नाइंसाफी और ज्यादतियां नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 18 साल से कम बच्चा बच्ची है, अब माँ बाप की कस्टडी है, माँ बाप जो सही समझेंगे उस तरीके की वो तालीम देंगे, हाँ यकीनन वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप जो अपने बच्चों के लिए सही समझते हैं आप वही करेंगे। और लेकिन बात ये कानून की नहीं है, बात ये वैल्यूज की है, बात ये तहजीब की है,
4: वो कहते हैं कि नहीं, आप जिस तरह अपने बच्चों को बड़ा करते हैं आप भी अपने बच्चों को इस तरह बड़ा करें, जबकि जमहूरियत में ऐसी बात है ही नहीं। आप कानून के दायरे के अंदर रहते हो, आप अपने बच्चों के लिए जो बेहतर समझते हैं आपको उसकी इजाजत है, और लेकिन ये सियासतदान जो है इसको भी अब टारगेट करेंगे इस चीज को। और मैं उसमें की मिसाल आपको दूंगा कि अभी कुछ अरसा पहले ना इन्होंने, जिस दिन हमारी पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, तो उस दिन जो नील फलगाव ने कंजर्वेटिव का, ये कह रहे थे कि मुसलमान जो है ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल करते हैं अपनी बच्चियों पे, और जिस तरह की अभी स्विमिंग, अगर कुछ औरतें हैं वो बच्चियां औरतें हैं वो कहती हैं कि हम स्विमिंग जो है सिर्फ लेडीज क्लास में हम करना चाहते हैं, इसको उन्होंने अब बंद कर दिया हुकूमत ने, कम्यून ने मिसाल के तौर पे, या इन्होंने कहा कि जब आपने डांस फेस लेना है तो औरतों ने जरूर हाथ मिलाना है स्किन से स्किन लेने के लिए, या इन्होंने जिस तरह बुरखा बैन किया, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आप कानून जानते हैं। अच्छा, अब बात यह कि जिस दिन हमारी डिबेट हुई है कोपेनहेगन पार्लियामेंट में, तो उसके अंदर दिलसफलगांव ने उठ के कहा है कि आप बताएं कि मुसलमानों के अलावा ये कौन करता है जबरी अपने बच्चियों पे। तो बात वही होगी जो मैं हमेशा करता हूं, आगे से कोई बोलने वाला हो तो फिर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहां पे मैंने पार्लियामेंट में उठ के ये कहा, मैंने कहा कि आप मुझे एक बात बताएं, मतलब ये मैं अक्सर पहले भी बात कर चुका हूं कि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये उस सर्वे को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ, कहते हैं कि एक सर्वे आया जिसमें मोर देन 40% जो मुसलमान पेरेंट्स है उनसे ये पूछा गया कि आपकी बेटी अगर किसी एथनिक डैनिश से, नॉन मुस्लिम से शादी करती है, रहना चाहती है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। उस सर्वे में मोर देन 40% जो रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। इस चीज को उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया, उस दिन पार्लियामेंट में भी इशू बनाया, लेकिन ये बात बताना भूल जाते हैं कि यही सर्वे एथनिक डैनिश पेरेंट्स पे भी हुआ है, उसमें यह पूछा गया कि अगर आपकी बेटी एक मुसलमान बॉयफ्रेंड या मुसलमान से शादी करती है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। राजा साहब, आप गैस करें वहां पे क्या जवाब हुआ होगा। वहां पे भी यही जवाब था, मोर देन 40% ने कहा हमारी डैनिश एथनिक डैनिश बच्ची अगर किसी मुसलमान से शादी करती है या बॉयफ्रेंड रखती है तो हम उस चीज को नापसंद करेंगे। इस फैक्ट को तो सामने नहीं लाया जाता, फैक्ट उसी को सामने लाया जाता कि मुसलमान माँ बाप ने या माइनॉरिटीज के माँ बाप ने ये कहा कि 40% ज्यादा ने कहा है कि हम नहीं पसंद करेंगे कि हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी करे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये कहते हैं कि ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल है, तो ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल उतने ही एथनिक डैनिश फैमिलीज में है जितने की मुसलमान फैमिलीज में है। लेकिन जब इनका अब ये पॉलिटिकल एजेंडा, जब ये अब इस मैनिफेस्टो पे जब ये काम करेंगे, तो एक सेकंड, तो उस पे जो है ये फोकस जो है नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है मुसलमानों पे फोकस करेंगे, ये उस पे फोकस नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो अभी नई हुकूमत आई है उसमें हमारे हवाले से जो नरमी आनी चाहिए थी, क्योंकि देखें कि हमने 7% ने इनस लिस्ट को वोट दिया, एलसैन सुख बामुश्किल अंदर आई, इसी तरह रेडिकल विलस्ता को वोट दिया, लेकिन हमारा वही बात होगी जो मैंने पहले तजिया किया था कि जब ये मैनिफेस्टो बनेगा तो इसमें आप देखेंगे हमारे मुतल्ले का कोई जो है कानून, कोई नरमी, कोई कुछ नहीं होगी। जी राजा साहब,
2: सिकंदर आपने बताया कि हमारे मुतल्ले कोई किसी पार्टी जो हुकूमती जमात में पार्टियां बैठी हैं उसके हमारे मुतल्ले कोई कुछ भी नहीं है, तो लेकिन जितने कैंडिडेट आते हैं इलेक्शन में ये इन्हीं पार्टियों में आते हैं हमारे गैर मुल्की बैकग्राउंड के।
4: जी राजा साहब, मुझे समझ नहीं आई, फिर फरमाए।
2: मैंने कहा कि ये जो आपने बताया साहब, ये सारा चीज़ है मंजरनामा आपने बताया कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे गैर मुल्की या मुसलमान जो है डैनिश सारे इन्हीं पार्टियों में जाते हैं, वजह क्या है
4: इसकी। मेरा ख्याल से जो देखे सब की अपनी अपनी वजह होगी, मैं जो समझता हूँ वो वजह ये है कि इन पार्टीज में सीट आसानी से निकल जाती है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्शन लड़ना आसान होता है, इसलिए ये जो है یہاں پہ کریئر بنانا آسان ہوتا ہے. یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے, آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو جواب دیں گے, لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے. کیونکہ نہیں تو آپ یہ بھی پوچھیں نا ان سے کہ اب آپ کی حکومت آئی ہے, آپ کی پارٹی اب اقتدار میں ہے, تو کیوں نہیں اب آپ نے جو اتنے 10 ہفتے لگا کے مینیفیسٹو تیار کیا ہے, ہمارے لیے نرمی کیوں نہیں ہے پاسپورٹ پہ, ہمارے لیے نرمی کیوں نہیں ہے فیملی سامفیون پہ, ہمارے لیے نرمی کیوں نہیں ہے جو آپ کی جو طریقہ واردات ہوتی ہے مسلمانوں کو گندا کرنے میں, کیوں نہیں ہے نرمی ان چیزوں پہ, کیوں نہیں نرمی, آپ نے کیوں نہیں یہ برقع بین ہٹایا, آپ نے کیوں یہ قانون نہیں ہٹایا کہ اب عورتوں کو علیحدہ سوئمنگ کرنے کی دوبارہ اجازت ملنی چاہیے, آپ نے کیوں نہیں ہٹایا کہ یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ بھئی آپ جو ہے لازمی آپ نے کام کرنے ہیں اتنے گھنٹے, نہیں تو آپ کو وہ چھانکس پلیٹ جو ہے وہ کیوں نہیں آپ نے کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ سوال بنتے ہیں ان سے, پوچھنا چاہیے ان سے بالکل.
2: اور دوسرا سکندر, جو ایس ایف پارٹی شامل ہوئی حکومت میں, انسٹیشن حکومت سے باہر رہی تھی, انسٹیشن کی باتیں آ رہی ہیں کہ ہم پارکنگ کا کچھ کریں گے, بچوں کے 22 سال تک کے جو بچے ہیں اس کو فری سفر کی سہولیات دیں گے, پینشنسٹ کے لیے کچھ کریں گے, دانتوں کا علاج مفت ہوگا, یہ جو نعرہ ہے اس کے متعلق بتائیں.
4: دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ جو میں نے ابھی پہلے آپ کو بات بتائی ہے وہ تھی اسپیسیفکلی ہمارے متعلقہ, تو اس پہ تو میں نے آپ کو ایک بتا دیا ہے. آگے آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے علاوہ مینیفیسٹو میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, اس میں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ جو حکومت جو 22 سال سے جو کم سال کے بچے ہوں گے ان کے لیے فری ٹرانسپورٹ ہوگی, بہت بہت ہی اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بتاتے ہیں کہ جو چھینلے ہے وہ انسٹس نے کہا کہ وہ فری ہوگی, لیکن وہ کل ہی لاس لوکے نے سب کے لیے فری ہوگی, کل ہی لاس لوکے نے بیان دے دیا کہ یہ ضروری نہیں ہے سب کے لیے ہوگی. اس پہ اب بحث چل رہی ہے کہ مینیفیسٹو میں پھر لکھا کیا ہے اور آپ کی پالیسی کیا ہے. تو اس کے علاوہ اچھی چیزیں ہیں اوور آل سوسائٹی کے لیے, لیکن ہمارے لیے جو ہے نا, میں نے اس پہ ایک تبصرہ بھی کیا ہے, پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں, کہ میں نے لکھا کہ آپ ہمیں فری دانتوں کے لیے تو آپ دے دیں گے, آپ ہمارے بچوں کو ٹرانسپورٹ بھی دے دیں گے, لیکن عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہمیں, وہ آپ نہیں کر رہے. تو اس لیے دیکھیں راجہ صاحب, آپ جس ملک میں رہتے ہو نا, اگر آپ کی عزت ہی نہیں ہے, اگر آپ کو ایک برابر کا شہری ہی نہیں سمجھا جاتا, تو پھر آپ کو بے شک آپ کے دانت صاف کراتے رہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو ایک سیلف ریسپیکٹ ہے جانا, وہ اس سے قائم نہیں ہوتی.
2: یہ بات سکندر آپ کی درست ہے, لیکن دیکھیں ہمارے پڑوس میں ابھی سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے, وہاں تو کمیون کے, ریجن کے, پارلیمنٹ کے ایک ہی دن غالباً ہوتے ہیں, تو یہ اس کے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پینشنسٹوں کے لیے فری ہے سب, مطلب پینشنسٹوں کے لیے پاس ان کا فری ہے, بہت ساری سہولیات ہے, تو باقی چیزیں ہیں ان کو نظر آ جاتی ہیں سیاستدانوں کو. کمیون میں دیکھیں نا, چونکہ آپ خود کمیون میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کی انکم کم ہوتی ہے تو پھر کمیون کو سہولیات دیتی ہے, دانتوں کو بھی سہولیات دیتی ہے, پیپر ورک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے, حالانکہ قانونی ان کو سہولیات مل جاتی ہے, آخر میں جا کر پیسے یہ خزانے سے نکالنے ہیں. تو یہ دانتوں والا, اینکوں والا, یہ جو ایک مافیا سسٹم ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اسپتالوں میں دوائیاں مفت ہیں, لیکن جب آپ اپوٹیک سے خریدتے ہیں تو وہ اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں, جس کے پاس نہیں ہے پھر وہ کمیونوں میں جاتا ہے, پھر وہ سہولیات لیتا ہے, تو سسٹم آخر جا کر پھر بھی کمیون میں مانگنے کا ہی بنتا ہے. تو پہلے سے یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دی جائے, آپ کو والی بات عزت بھی دی جائے اور یہ چیزیں بھی ٹھیک کر دی جائے, تو کیا فرق پڑے گا خزانے پہ.
4: میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک اکنوم نے یا کسی ایکسپرٹ نے یہ بھی بکایا کہ اب یہ جو ممس جو ہے یہ ہاف کرنا چاہ رہے ہیں کھانوں کی چیزوں پہ, اور فروٹ اور سبزیوں پہ بالکل ہٹانا چاہ رہے ہیں. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ پریکٹیکلی آئیے سامنے, جب آپ لائیں گے تو اس کے اندر جو ہے بہت سارے ایسے, آپ سمجھ لیں یہ جو ایک چین ہوتی ہے, سارے جو پروڈکشن چین ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں کہ یہ سارا جو عوام ہے اس کو ہی یہ بینیفٹ ملے. یہ جو ایک پروڈکشن چین ہوتی ہے, یعنی کہ پہلے سامان بنتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے, پھر وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے مارکیٹوں میں پہنچتا ہے, اس چین میں یہ بہت سارا, یہ جو ممز کا جو چکر ہے, یہ ادھر شاید ان کو بھی زیادہ بینیفٹ ہوگا, اور وہاں سے جو ہے زیادہ یہ جو پرسینٹیج ہیں वहां से जो है उनको होगा, लेकिन हमें जो कंस्यूमर है हमें उस तरीके से ये इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस प्रोडक्शन चेन में जो ये रियायत दी गई है उधर ही पूरी कर दी जाएगी। तो बहरहाल ये तो चीजें अभी देखने वाली हैं कि अब आगे किस तरह होता है, क्या वो करते हैं, किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ कहा कि हम करेंगे, अब कब करेंगे ये अब देखने वाली बात है, कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है।
2: सिकंदर, आप खुद पार्लियामेंट में रहे, आपकी बड़ी मजबूत आवाज थी और आप सिस्टम को समझ चुके हैं और जानते भी हैं सिस्टम को। ये जो छुप छुपा कर जो बातें की जाती हैं, कागज लिखे जाते हैं, एग्रीमेंट पार्टियों में होते हैं कि ये करना ये नहीं करना, लोग दो चार दिन बातें करेंगे, दो महीने के बाद फिर भूल जाएंगे और जो कुछ अंदर लिखा हुआ है ये फिर आपस में जो है मिली भगत जिसे कहते हैं, ये सिस्टम अब चलेगा?
4: देखिये, बात ये है कि लोग बहुत तंग है, और मैं सिर्फ मुसलमानों की माइनॉरिटीज की बात नहीं करूंगा, मैं बजाते डेनिश मैं कहूंगा कि सारे बड़े तंग हैं। तंग ऐसे हैं कि खाने हला महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। हम देख रहे हैं कि उली हल बहुत बढ़ती जा रही है, जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, जो आम तबका है वो मुश्किल अपना टाइम गुजार रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो हालात हो रहे हैं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक सियासी चेंज आएगा, क्योंकि अगर ये सियासी चेंज ना आया तो लोग जो है वो अब फेड अप है, लोग अब एक्सेप्ट नहीं करते ये जो पुराने स्टाइल की जो सियासत है कि बात आप एक करें, बाद में जब आपको पावर मिले तो आप कुछ और करें। तो यकीनन कोई ना कोई चेंज आना है, नहीं तो सियासतदानों के लिए ही मुश्किल हो जाएगा,
2: सियासतदानों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सिकंदर, लेकिन एक मजबूत वॉइस भी तो होनी चाहिए, एक लीडर का कद काठ, जिस तरह कोई इसमें कोई शक नहीं है, मेहते का कद काठ है, लास लूके का कद काठ है, और भी कोई लीडर होंगे जिनका कद काठ होगा, लेकिन नई क्यादत जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रही, कोई लीडर इतना नहीं है जो इतना पॉपुलर हो।
4: नहीं देखें, असल में बात ही ये है कि आपको पता है लास लूके जो है वो वैसे ही उसकी पार्टी खत्म होने लगी थी, ऊपर से किस्मत है ना कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड का वो कट्टा खोल दिया, उससे हुआ ये कि ये फॉरेन मिनिस्टर था तो इसके ये फिर मेन हो गया, ये अमेरिका गया तो उसके बाद फिर जो है पार्टी जिंदा हो गई। और आप देखें कि इस वक्त जो पुरानी पार्टीज हैं वो ही जो है लास लुके ही वो था जो ये डिसाइड कर रहा था कि कौन सी हुकूमत बने। इसी तरह आप देखें कि मेरे फलग इसने अब तीसरी बार बन गई है। तो ये पुराने सियासतदान जो है इनका आप देखें कि इनमें होता ये है कि इनके पास सारी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो इनके सर्विस में होती है, फिर इनके पास बहुत पैसा होता है जिससे ये कैंपेन करते हैं, लोगों के सामने आते हैं, फिर तीसरा मीडिया एक्सेस इनके पास होता है जिस वजह से जो है लोगों को ये दूसरा ऑप्शन नहीं देते। मैं आपको एक बड़े मजे की एक बात बताता हूँ, इस वक्त डेनमार्क की जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 2% इन एस्टेब्लिश पार्टीज के मेंबर्स हैं, अंदाजा लगाएं सिर्फ 2%। तो इस फिगर को अगर आप मद्देनजर रखें तो इसका मतलब ये है कि इनके ज्यादा तो इनके फॉलोअर्स नहीं है, ज्यादा लोग तो इन्हें फिर पसंद नहीं करते, ज्यादा इनके साथ एंगेज नहीं कर रहे, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो यही पार्टीज होती हैं जिनको आप वोट दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो लोग हैं वो फिर इन्हीं पार्टीज में से किसी पार्टी को वोट देती है, और इसीलिए ये पार्टी जो जो जो हुकूमत है और ये जो पार्टीज हैं ये कोशिश इनकी यही होती है जो मेरा ख्याल है कि नई पार्टीज जो है वो ना आए, क्योंकि नई पार्टीज आएंगी तो फिर जब इलेक्शन होंगे तो फिर जो वोटर है वो उनको वोट दे सकता है, नई पार्टीज को इनको जरूरी नहीं है देना। तो इनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से जो है नई पार्टीज जो है वो ना आए ताकि यही लोग रहें। अभी पिछले दिनों में फिर अख्यास को फेलपिक ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो 20,000 सिग्नेचर है ना पार्टी बनाने के लिए इसको 20,000 से 50,000 कर दिया जाए, जबकि देखा जाए कि इस वक्त 20,000 तो कहने को है कि वैसे जब आपने देने हो तो 40,000 बनते हैं, क्योंकि अगर अमराजा साहब आपने अगर एक देना है तो फिर आप पहले जाके अपने मीडिया डी इस्तेमाल करके आप एक बार साइन करेंगे, फिर 7 दिन गुजरेंगे फिर आप दोबारा जाके मीडिया डी से साइन करेंगे फिर आपका एक साइन बनता है। इस तरह तो इसका मतलब ये है कि
2: ठीक है आपने जो कुछ लिखा हुआ है लेकिन फिर जमहूरियत कहाँ गई?
4: जमहूरियत जो है यही बात है कि जमहूरियत इस वक्त बड़ी एक चैलेंजिंग फेस से गुजर रही है। यहाँ पे सियासत जो है वो प्रोफेशनलाइज हो गई है बहुत ज्यादा, और ये इशू है बहुत बड़ा और ये आगे भी इशू बनेगा, और इसीलिए बहुत सारी ऐसी आप समझ लें कि लोकल्स और लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, ऐसी मूवमेंट सामने आ रही हैं जो ये कह रही हैं कि जमहूरियत जो है इट्स अंडर प्रेशर इन डेनमार्क, और जिस तरह के कई साल पहले जमहूरियत एक अच्छी तरफ जा रही थी, एक बेहतरी की तरफ जा रही थी, अब कुछ सालों से जमहूरियत जो है وہ ریورس میں جا رہی ہے.
2: جمہوریت بڑا اچھا فکر آپ نے کہا کہ جمہوریت ریورس میں جا رہی ہے. تو سکندر اسی طرح باقی ہماری جو لوکل خبریں ہوتی ہیں, لوکل بات چیت چلتی رہتی ہے, پاکستانی غیر ملکی اپنا اپنا اجتماع کرتے رہتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ڈیمونسٹریشن بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے حقوق کے لیے فائٹ بھی کرتے ہیں, تو کیا ہماری کمیونٹیز صرف بند کمروں کے اندر یا جہاں موقع مل جائے وہاں بات کرتے ہیں؟ کیا ان کو جمہوری حق مانگنا ہو, اب جس طرح سیاسی پارٹیوں میں جو لوگ ہیں وہ اپنی پارٹیوں کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کر سکتے, یہ قانون اجازت نہیں دیتا؟
4: قانون تو اجازت دیتا ہے, اور ویری آنیسٹلی مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی اندرون لائنز میں پارٹیز کے اندر وہ کیا بات کرتے ہیں, کہ کیا سلسلے چل رہے ہیں. البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری پبلک ڈبیٹ ہے, جو ہمارے قومی اخبارات ہیں, جو ٹی وی ہیں, اس میں تو انفارچونیٹلی ہماری جو نمائندگی بہت کم ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے بھی پچھلے دو تین ایک مہینے میں کوئی تین چار قومی اخبار میں نے کالم لکھے ہوں گے, تو میں اس چیز کو ضرور مس کرتا ہوں کہ ہماری اور آوازیں جو ہیں, خواہ وہ ڈینش, ترکی, پاکستانی, عربی, کوئی بھی ہو, تو سیاست میں انوالو ہیں, وہ کالم لکھا کریں, وہ پولیٹیکل ڈبیٹ میں اس طرح حصہ لیا کریں. یہ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لگا دینا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں, جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پڑ رہی ہے, اس جگہ پہ آپ لکھیں, ادھر آپ اپنی آواز کو کریں. میں نے ابھی ایک کالم لکھا تھا پچھلے دنوں جس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہم اس بار جو سب سے بڑا جو لوزر ہے نا اس الیکشن میں, وہ ہم مسلمان ہیں, مائنورٹیز ہیں. اور اس میں میں نے یہ اس کا باقاعدہ تمہید باندھ دی اس بات کی, میں نے باقاعدہ اس کو اپنے انالیسس دیے اس میں, تو میں نے اس میں یہ لکھا, ایک فکرہ لکھا, میں نے کہا کہ ایشو ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جہاں پہ ہمیں لکھنا چاہیے, بولنا چاہیے, وہاں پہ ہماری آواز ہے ہی نہیں. اب ہمارے جتنے بھی یہ ساتھی ہیں ڈفرینٹ پارٹیز میں, یہ اگر لکھیں, یہ اگر کالم لکھیں, یہ میڈیا میں آئیں, اپنی آواز اٹھائیں, تو پھر ہی پریشر آپ بلڈ کرتے ہیں نا, ویسے تو آپ پریشر نہیں بلڈ کر سکتے. تو میری اس میں میں نے کالم میں اس پہ پوری ایک تفصیل میں نے لکھا ہے کہ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم سب سے بڑے لوزر ہیں اس الیکشن میں, اور اس ہارنے کی ریزن بھی ہم خود ہیں. اس میں پھر میں نے یہ لکھا ہے کہ کیوں ہم ریزن ہیں. میں اپنے جو جتنے بھی ہے سامعین ہیں ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ضرور میرا کالم پڑھیں, جس میں میں اپنی وہ انالیسس دیتا ہوں کہ ہم ہماری اپنی غلطی کیوں ہے کہ ہم یہ الیکشن ہارے.
2: لیکن سکندر یہ بحث بھی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اتنے کالم لکھتے کیوں ہیں. آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جو بیک گراؤنڈ کے مسلمان ہیں یا اپنا غیر ملکی ہیں, وہ کتنے لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں تو کالم لکھتے ہیں, کتنے آپ پڑھتے رہتے ہیں ان کے, کوئی تعداد ہے اس طرح کی؟
4: میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کا.
2: تو لیکن یہ سننے میں آیا, میں کسی نے کہا جی کالم لکھنے سے کیا ہوتا ہے,
4: یہ تو میرے خیال سے کچھ جاہل بندہ ہی کہہ سکتا ہے کہ کالم لکھنے سے کیا ہوتا ہے. جہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ اوپینین میکنگ کرتے ہیں, وہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کمرے میں تو نہیں نہ کرتے, وہ آپ پبلک ڈیبیٹ میں ہی کرتے ہیں, آف لائن ڈیبیٹ میں ہی کرتے ہیں. یہ جس نے بھی آپ کو کہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پہ مکمل طور پہ وہ ابھی اے بی سی کبھی نہیں ان کو پتا ہوگا, کیونکہ کالم لکھنے سے ہی, ٹی وی میں آنے سے ہی آپ کا آپ کی جو ایک آواز ہے وہ سنی جاتی ہے, آپ اوپینین میکنگ کرتے ہیں, آپ ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, وہ تب ہوگی, تب آپ کیا کہتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ کام کر سکتے ہوں گے. بہت ضروری ہوتا ہے جہاں پہ
2: جس طرح دیکھیں نا آپ کالم لکھتے ہیں, ابھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ بھی جو ہے وہ لکھتے رہتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, انڈسٹری سے ملتے ہیں, تو ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے ان کے متعلق؟
4: دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو سفیر محترم ہیں امبیسڈر شعیب سرور صاحب, میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے بھی کئی اب امبیسڈرز دیکھ چکا ہوں, بڑے اچھے سے امبیسڈر آئے ہیں ہمارے ڈنمارک میں, لیکن ان جیسا نہ کبھی آیا ہے اور میرا نہیں خیال کہ ان جیسا کبھی آئے گا. دیکھیں ان کی جو اوپن ڈور پالیسی ہے کمیونٹی کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک بالکل بے مثال ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی امبیسڈر نے اس طریقے سے کمیونٹی کے ساتھ انگیج کیا ہو اور اس طریقے سے اپنی اوپن ڈور پالیسی رکھی ہو کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو, کسی کو کوئی ایشو ہو, وہ امبیسڈر صاحب سے ڈائریکٹ جو ہے رابطہ کر سکتا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو بڑے جو محترم پرسنالٹیز ہیں اس کمیونٹی کی, ان سب کا اچھا رابطہ ہے, وہ سب کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں خود تو وہاں نہیں تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایلبس لون میں کوئی مینا بازار یا کوئی اس طرح کا کوئی ایک سلسلہ تھا, کوئی کلچرل پروگرام, اس میں امبیسڈر صاحب جو ہیں ہمارے پاکستانی جو امبیسی ہے उन्होंने 14 मुल्कों के एम्बेसडर जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे वहां पे लेके आए, हमारा कल्चर दिखाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा मुझे पता है कि वो यहाँ की हुकूमत के साथ, यहाँ के इनके सिलसिले जो है बड़े अच्छे कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान और डेनमार्क के टाइज को वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आगे लेके चल रहे हैं। इसके बाद अब ये देखें कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो काउंसिल सेक्शन है उसमें किसी का भी वास्ता पड़ेगा। मुझे पिछले दिन कोई कह रहा था कि उनकी जिस तरह की वहां पे सर्विस है, जिस तरीके से वो तावन करते हैं, कोई खुदा न खास्ता हो जाए मजबूरी, कोई खुदा न खास्ता कोई इशू ऐसा हो जाए, एमरजेंसी पड़ जाए, तो ये एम्बेसी फुल तावन करती है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी अल्लाह पाक उनको जन्नतों में जगह फरमाई, अभी PhD स्टूडेंट थे जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, फोत हो गए हैं, तो उनको पता चला, उसमें मुझसे किसी ने यहाँ पे रابطہ किया, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने रابطہ किया मुझसे, कहा कि भाई ये हो गया वाकया, हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो एम्बेसी से हम रابطہ करना चाह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ तावन करे। मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैंने फोन किया और मैंने जो अली साहब हैं, अली सतार साहब जो काउंसलर हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे ये वाकया हो गया है। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त उसी सेकंड में कहा, मुझे जिन्होंने आपको फोन किया मुझे उनका नंबर दें ताकि हम उनसे रابطے में आए और हम पूरा तावन करेंगे। तो फिर आपके सामने अब बकाया अच्छे तरीके से, मतलब जो कम्युनिटी एक, एक, एक पाकिस्तानी के लिए, एक नौजवान के लिए जो इस मुश्किल टाइम से उनकी फैमिली जो गुजर रही थी, जो एक हादसा हुआ है उस पर जिस तरीके से उन्होंने फौरन रिएक्ट किया, कम्युनिटी का साथ दिया, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा उनका एक अमल है, अच्छा एक उनका एक तरीका है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कम्युनिटी जो है इन्हें बहुत ही इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि एम्बेसी और एम्बेसडर साहब जो हैं वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम में इनको हमेशा हम सबको साथ देना चाहिए।
2: सिकंदर, ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि एम्बेसी का अमला हर किसी से तावन करता है, और आपने भी बताया, उबैदुर रहमान कुरैशी साहब ने भी ये बताया। सिकंदर, आप बात कर रहे थे तो आपने देखा कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम हो रहा था, कुछ तंजीमात भी वहाँ मौजूद थी, उस पर जो है सफीर मोहतरम के मतलब भी बात की गई, उसके बाद एक इश्तहार भी हमारी नजरों से गुजरा। तो एज ए पॉलिटिशियन आप भी चूंकि लोकल है, आप क्या कहेंगे?
4: जी राजा साहब, मेरे नजरों से भी वो गुजरा है और मैं समझता हूँ बड़ी एक शर्मनाक एक आर्टिकल था जो लगा है। और मैंने जब पहले देखा है तो मुझे यकीन नहीं आया कि हमारी जो यहाँ की इतनी सारी जो सियासी तंजीमें हैं उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया हो। ये मैं इस चीज को मान रहा नहीं था। उसके बाद मेरी जो मियां मंशा साहब हैं उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे फिर यही बात बताई कि जिस तरीके से इस चीज को पेश किया जा रहा था ऐसी हरगिज बात नहीं थी। वो एम्बेसी साहब के साथ भी बड़े अच्छे तलकात हैं, एम्बेसी के साथ बड़े अच्छे तलकात हैं, तो ये कोई स्पिन दिया जा रहा था। तो फिर मैंने बाद में देखा कि आपने भी जो डिफरेंट सदूर हैं, जो डिफरेंट सदर हैं इनके पार्टीज के, उनसे आप बात कर रहे हैं और सभी इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल ऐसा बायकॉट का एम्बेसी का तो कोई बात हमने की नहीं है और ना ही हम इस चीज को मानते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है कि इन सब ने उस जाली खबर को या नकली खबर को या आप समझ रहे हैं कि जो किसी ने को जो शैतानगी की है उस चीज को जो है इन्होंने सबने डिनाई किया। और मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम भी होता है, क्योंकि अब अगर जिन तंजीमों के नाम लिखे हुए थे उन सब ने अगर बाद में ये कहा कि हमने ये नहीं लगवाया आर्टिकल और हमने इस मीडिया में और हम इसको कंडेम करते हैं, तो फिर मैं समझ ये हर बात अच्छी बात है, यही तो थी मेरी इनसे। लेकिन फिर मेरा ख्याल ये है कि इन सब को जिन तंजीमों के वहां नाम लिखे हुए थे उन सब को उस मीडिया से रابطہ करना चाहिए और उस मीडिया से कहना चाहिए कि आपने हमारे तंजीमों के नाम क्यों लिखे हैं। और वो मीडिया जो है वो बाद में, जिसे हम डेनिश में पेक्टील से कहते हैं, कि वो बाद में दोबारा आर्टिकल छापे कि ये आर्टिकल जो था इसमें फैक्ट्स गलत थे, इन तंजीमों ने ये नहीं कहा, क्योंकि नहीं तो ये साइबर क्राइम बनता है, ये डेनिश लॉ के मुताबिक भी क्राइम बनता है और यकीनन ये पाकिस्तानी कानून के तहत भी एक क्राइम बनता है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी तंजीमें हैं उनके जो सदर हैं जिन्होंने आपके रेडियो पे बाद में कहा है कि हमें तो नहीं पता ये किस तरह लगा है और हम इसको कंडेम करते हैं, उन्हें उस मीडिया से रابطہ करके कहना चाहिए कि आप बताइए किसने लगवाया है, आपने हमारा नाम इस्तेमाल किया है तो ये किसने लगवाया है, اور آپ اس کی پریکٹیکل سے کریں, آپ دوبارہ آرٹیکل بنائیں جس میں آپ لکھیں کہ یہ آرٹیکل غلط تھا, اس میں فیکٹس غلط ہے, اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف پرچہ کریں. کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی تنظیموں کے نام لے کے یہ کہہ دیں کہ ان سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی امبیسی کا بائیکاٹ کیا جائے. اگر یہ بات نہیں ہوئی, جو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ریڈیو پہ آ کے سب نے بعد میں کہا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے, تو پھر ان کو اس میڈیا سے رابطہ کر کے کہنا چاہیے, بتائیں یہ آپ نے کیوں لگائی ہے, کس نے لگوائی ہے خبر, اگر آپ لوگ ہم نے خود نہیں لگوائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے چند لوگ ہیں یا لوگ ہوتے ہوں گے جو ایک غلط فہمی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایک کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں نے وہ خبر بالکل دیکھی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان سب نے تقریباً جو میں نے دیکھا ہے

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو موسم آج بہت اچھا ہے، بادل بھی ہیں، دھوپ بھی ہیں، لیکن موسم بہت اچھا ہے، خوشگوار موسم ہے۔ سیاسی موسم بھی اچھا بھی ہے اور ملا جلا بھی ہے۔ غیر ملکیوں کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں، ڈنمارک کے بارے میں، ڈنمارک کے شہریوں کے بارے میں، تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ نگار عدنان علی امین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب کیسے ہیں؟
1: اللہ کا شکر عدنان، آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے عدنان، آج موسم کے لحاظ سے جو سیاسی خبریں ہیں، کیا بریکنگ نیوز لا رہے ہیں، کیا کمیٹیوں میں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے؟ بہت سارے دھماکے ہو رہے ہیں سیاسی۔
2: ہاں رضا صاحب، دھماکے تو کافی ہو رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی جو بن گئی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا کیا کہتے ہیں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے نا، یہ ویل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فینس ویل، جس میں یہ سارا بجٹ وغیرہ اور وہ آتا ہے، اور اس میں بگیسٹ سرپرائز یہ ہے کہ اس کی جو چیئرمین ہیں وہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں انگلش لسن کی لڑکی ہے، جس کا نام وکٹوریا ویلسکوسیس ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں جو ہے وہ ہے میل امریکہ سے، مطلب کہ وہ بھی آدھا فارم میں۔ تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ایک بڑی پوسٹ پہ، کیا کہتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ اس کا ادھر سے بھی اس کی ماں ہے اور اس کا ایک ہسٹری بھی ہے اس کے اندر، اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اس ویل میں بیٹھ گئی ہے۔ اور اس میں سرپرائزنگ یہ ہے کہ جو وائس چیئرمین ہے وہ ٹیسٹ ہو چکا، ٹھیک ہے، تو مطلب کہہ لیں کہ یہ ایسی ویل ہوگی جس کے اندر دونوں کا کیا کہتے ہیں ٹکر کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ انگلش لسٹ نے ایک طرف جانے لگیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف جانے لگیں گے۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اولینگ پلسیت کے علاوہ ویسے تو ان کی کافی چیزیں آپس میں ملتی بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی پینشن کے بول پہ بولتے ہیں اور ان چیزوں پہ بولتے ہیں، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک قسم کا ان کا ہوپفلی اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 10th فال کے 25 جو ہے وہ انٹرسٹ ویل کے گورنمنٹ پاس پہ وہ بیٹھ گئے ہیں، وہ 2024 سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کنٹینیو کریں گے، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے، کافی بال کیا کہتے ہیں چینج کیا گیا اور کافی کیا کہتے ہیں بال وغیرہ پھینکے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اپنا کام شروع کر دیں گے اور اپنی چیزیں کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ان پہ اب کہتے ہیں ایک قسم کا کام شروع ہو جائے گا۔ سیاسی بریکنگ نیوز پہ یہ بھی ہے نا کہ 11-12-13 تاریخ کو فال کے مزہ ہوتی ہے پاول کے اندر، جہاں پہ یہ سارے کھڑے جاتے ہیں، تو یہ تو وہاں روانہ ہو گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا کہتے ہیں سخت مقابلہ آئے گا، کیونکہ دو پرانے زمانے میں جس طرح ہوتے تھے بلاک، اس قسم کے بلاک آ گئے ہیں نا، کہہ رہے ہیں خود بلاک اور ایک فلو بلاک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس بار کتنے ہیوی اٹیکس ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لوکے پہ تو ہو رہے ہیں کہ وہ اس نے پتھاوی کی ہے فلو بلاک کے ساتھ، تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں اویلینگ کے تپیت بھی بڑا ہارٹ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ موٹر اسپور کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، ٹینس بال کے بچی پہ کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، تو وہی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا بنتی ہے، کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے اور اسٹرانگ کرنا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ کافی لوگ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے، تو وجہ وہ یہی ہے کہ جو ٹینس بال کے بچی ہے اور تیمس کے مکھاڑ ہیں، انہوں نے اویلینگ پلسی کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک اور میں چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جن کے پاسپورٹ ہولڈ ہوئے تھے الیکشن کی وجہ سے، وہ 3-4 اور نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پاسپورٹ کی طرف آئیں گے۔ جو میں نے اس کی لیٹسٹ انفارمیشن سنی تھی وہ یہی تھا کہ ہم افتاؤ تک پہنچ جائیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو کیا کیا کیا اسٹیٹمنٹ اس پہ آتی ہیں۔
1: عدنان، یہ جو فلمی ڈائلاگس کی طرح باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اگر انہیں سسٹم کی بات کریں تو وہ ان کی جو ہے اس ویل کی جو ہے وہ چیئرمین بن گئی ہیں انہیں سسٹم والے، तो वो जरा जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में जरा वो अच्छी तरह वो इनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
2: सब मैं एक बात आपको कहूं कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला रहा रहना हुआ तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बेलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है।
1: तो दांतों के इलाज के लिए उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरा ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज इतना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
2: राजा साहब उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है, दूसरा कैपेसिटी का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1000 कमी है डेंटिस्ट की, 10 प्लायर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टर ने आपने क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी हाश थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा और जो इरागन है जो नई सोनस मिश्रा बनी है वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाना है। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट पंक्चरिस्ट और जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाना है तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक टाइम पे इन्हें पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता था प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तबील करके ला के इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी।
1: सबसे पहले जिस तरह तो बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप क्या सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
2: नहीं राजा साहब, अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त। मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है, मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इन्होंने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन होता है, लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फिनिशर स्टार्ट टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे वो मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फैंस नए आ गए, पुराने हट गए, तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बिजता वाले ने तो ये किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी, और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से होने हैं और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में कमिंग डेज में कैसे ये
1: अदनान कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास गई है?
2: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास, जो उसके पास है।
1: तो आप देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, सैफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करेंगे।
2: सर आप एक चीज हमेशा याद रखना कि उलनिए पुलटिकन का जो नेगोशिएशन इस विकिंग्स कोनले के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस पर बैठी हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लास लुएगा और मेरे फर्स उनके मंत्रिता डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52, और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि सामने टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल लें, निपार भी डाल लें, पैसवाल के पक्षी भी डाल लें, टेमस के मुखाड़ा भी डाल लें, तो उलनिए पुलटिकन जो बन गई हुई है वो वहां पे ही रहेगी और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए, मगर वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं जो उन लोग हैं, हम लोगों को बाहर से किसी इंक्लूडिंग डांस को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है, मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है
1: ना। तो ये तो गैर मुल्कियों को पूछना चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए वो बोलते क्यों नहीं है।
2: अरे सर ये तो वो उनको ही पता है ना, ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक एक एक, एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक ये इलेक्शन जब हो रहा था इलेक्शन के दिनों में जो बैट हो रही थी वहां पे ना एक छोटी सारी बात शुरू हो गई क्योंकि रुमाल पे चॉकलेट पर डिबेट शुरू हो गया और वो प्रिपरेशन के साथ आए हुए तो मुझे पता था मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो जीप जीप स्टैंड उसके थे, मैं ये मेरी बीवी का राज था वो ये कहते आ तेरी कहते आ तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी ये चुप कर जाएंगे। वो कहते हैं मैंने कहा एक बात मुझे बता तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया। मैंने कहा मुझे एक बात बता तुम्हारी भी शादी हुई। कहता हूँ कहते तुम अपनी बीवी की डिसीशन सपोर्ट नहीं करते। कहते मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीशन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीशन सपोर्ट करनी है? तो तू मैंने को से कहा तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी बीवी का गेस चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है? और उधर जितनी सेल्स थी वो सारे चुप हो गए। वो सारा एक बात में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तुमने उसको जवाब सही दिया, उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा मैं सपोर्ट करूं। मैंने कहा बात होती है आप करने की, अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने जब पूछा था तो वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया अब इसको तब्दील करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठे को मैं डेफिनेटली उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनको बोलते नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाएं या कुछ करें तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है। इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे आप बाहर से लाते जाएंगे, मौत में वही बयान देने अगले इलेक्शन में एक अंदर आए एक बाहर आए एक अंदर आए एक बाहर आए। मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़े, ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे और वो भी बार बार एक बात करता रहे और हमारे सारे कहते कान जो है ना वो तागा पड़ते हैं इस बात को सुन सुन के और फिर में ये हो कि हम के चलो मार्च पे ही असी कुछ और ही करिए।
1: अदनान ये आखिरी सवाल है इसी पर क्लोजिंग करेंगे, आपका तजिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे?
2: मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं मुझे नहीं पता। मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इन्वेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे कर सके नहीं? देखिए जहां तक मेरा नॉलेज है इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं, वो ने परमिशन लेके वो उस प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए। तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके کیا کہتے ہیں چیزیں کرنے لگ پڑے تو ہم کیوں نہیں کر رہے. ہم تو ادھر اب کہہ لیں تقریباً 56-60 سالوں سے, 56 سال ہو گئے ہمیں یہاں پہ, تو ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں.
1: بڑی اچھی بات کی ہے, انشاءاللہ اس پر بات چیت جاری رہے گی. عدنان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
2: اوکے, اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے عدنان امین علی جو کہ تجزیہ کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہمارا آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں. اے

0: तो मैं खाली एक मिस्त्री का काम करूंगा, जब मैं कूपे फॉर्म में बनूंगा तो मैं ज्यादा चीजों का काम कर सकूंगा और मैं ज्यादा चीजों को समझ सकूंगा और
1: तो
0: ज्यादा
1: चले
0: मसालों को
1: अदनान आते हैं,
0: कैटर।
1: शाह साहब भी सुन रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। तो एक जो समेरा बनी है वो बैकग्राउंड के हवाले से मिनिस्टर बन गई है, मेहनत की है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी हमारी कम्युनिटी है 40,000 है या उससे ऊपर है, तो एक मेंबर भी पार्लियामेंट नहीं बनवा सके।
0: यार सब देखे नहीं, पार्लियामेंट जो मेंबर है ना, देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना, तो एब्रुसलोन का जो एब्रुसलोन से बंदा निकल गया है, रहता मचियस यहाँ का ही है। मसला ये था कि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे ना, वो 6-7 खड़े हो जाते हैं, एक आम तो होती है, एक जजीरा बना होता है। जो मेन कैंडिडेट था ना हमारा यहाँ सोशल डेमोक्रेट का, वो नहीं निकल सका। जो गाड़ीखेर मिनिस्टर लाए थे, वो जुहेर लाए थे, वो भी नहीं निकल सका। बीवी लाए थे एब्रुसलोन से, वो भी नहीं निकल सकी। अभी इस चीज की समझ खुद नहीं आई कि क्या कहते हैं कि इतने कैंडिडेट थे, दो हमारे एब्रुसलोन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक जुहेर खड़ा हुआ था, एक बीवी खड़ी हुई थी, वो दोनों नहीं आ सके एब्रुसलोन से। क्यों नहीं आ
2: नहीं
0: सके?
2: अदनान, इसमें ये वजह होती है कि ये जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ना हम लोग पार्टी के, कि भाई फलानी पार्टी के साथ हम सामा बात करेंगे, मसलन सोशल अपना रेडिकल फ्रंट ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे, तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी। असूली तौर पर डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की जो थी ना सेकेंड मंडेट, उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाने। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इससे बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, ग्रुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
1: अदनान, इसमें अगर आप वजाहत कर दें, साथ साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है डेंशों से करते हैं।
0: साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की है, शाह साहब ने एक बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम तोड़ने लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना केलन, वो दो हिस्से में होती थी रेकियों, अब वो एक रेकियों में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसिलर भी होंगे, तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। कहा तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं 4 साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मेरी अपनी अपनी पर्सनल राय है।

0: ने गिनवाई हैं, ये सारी इनके लिए फ्री होनी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन जो है वह हर बंदे को 8 से लेकर 10 हजार पाउंड मिलती है, तो उसमें तो गुजारा भी इतना आसान नहीं होता। मैं एक चीज, क्योंकि जो जो नई गवर्नमेंट के लिए जो मसला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये आ रही है खबरों में भी आ रहा है और सुना भी जा रहा है, कि ये हो सकता है टैक्स को ना थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आया ये टैक्स बढ़ाते हैं तो मराहत कहाँ पे है, अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आसानियां कहाँ पे है। तो जो आपने चीजें गिनवाई हैं पेंशनिस्ट के लिए, जो शाह साहब ने मोटर कहा कि बस के लिए जो किराए वगैरह है, ये जैसे स्टूडेंट है उन सब के लिए ये सहूलतें, उनसे खासकर जो जो बाने फैमिली हैं जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी एक्स्ट्रा इमदाद मिलनी चाहिए। आज आप देखें ना, हम 50-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज आप किसी सुपर मार्केट में जाए, आपके पास एक 1,000 करोड़ का अगर आपने सौदा लेना तो आपका एक तो थैला भी नहीं भरता। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जो चीजें आपने बताई हैं वो पेंशनिस्ट के लिए फ्री होनी चाहिए।
1: जी शाह साहब, फ्री होनी चाहिए और नाम है।
2: ये बिल्कुल फ्री होने चाहिए। इसके अंदर यह है कि पेंशनिस्टों को जो बोली दी है इन्होंने, वो बोली आप हैरान होंगे कि वो वेस्टाइन और कोपनहेगन में वो बोली जो है वो अनमेनली बोली जो है अनमेनली बोली सेल्स के जो किराए पे कमरे देते हैं, लाइट देते हैं, उससे ज्यादा महंगे हैं। तो लिहाजा ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बंदे ने जो पेंशनिस्ट चला जाता है, या खुदा ना करे वो फोर्सेस पेंशन पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके लिए जो किराया है वो जिस तरह 70s और 80s में होता था उस तरीके से उनको हाफ किराया देना चाहिए। अब हैरानगी की बात है कि लोगों की इतनी पेंशन नहीं है जितने के ज्यादा वो अपना पेंशनिस्ट जो है वो दे रहे हैं, हौसला है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे बड़ी गड़बड़ जो है कि दो घर के फर्द जो हैं वो दिन रात काम करते हैं, जब वो दोनों पेंशन के एज पे पहुंचते हैं तो एक एक को कम पेंशन मिलती है और दूसरे को ज्यादा पेंशन मिलती है। वो उसका बहाना ये करती है गवर्नमेंट कि देखे जी ये तो हुस्टन इनकम, ये जो सिलसिला है हुस्टन इनकम का ये खत्म करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से लोगों के जो पास बचत है वो ज्यादा होगी। अगर दोनों को बराबर का पेंशन मिलेगी तो वो खुशहाल तरीके से रहेंगे। इस वक्त पेंशनर्स और बच्चों बच्चों वाली फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा दबी हुई है, इकोनॉमिकली उनके ऊपर बहुत बंडल है। जी राजू साहब,
1: जी अदनान, आखिर में आपसे भी ये सवाल सारे या आपके साथ, आपने सुन लिए सबके जवाब भी सुन लिए, और आखिर में आप क्या कहेंगे?
3: ये ऐसे ही होना चाहिए, और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इस पे इंशाल्लाह ताला काम भी किया जाएगा और इसके लिए हल भी निकाले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जैसे कहा गया है कुछ चीजें प्रेशर पे है, पर इंशाल्लाह ताला इस पे अब काम किया जाएगा और इस पे देखा भी जाएगा, और कमिंग डेज में जैसे जैसे हमें इतला मिलेंगी कि फ्रेंड्स भी कैसे है तो भी उसको बताएंगे।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। सब नाजरीन ये थे अदनान अली अमीन, सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब, मुजीब रहमान कुरैशी साहब, इन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना, हमने छोटे छोटे सवाल भी किए, उनकी राय भी ली। सब नाजरीन आपको भी ध्यान देना चाहिए, हमारा काल किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके जहन में कोई बात है, आप अच्छी कोई चीज़ राय देना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले।